फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं।

0: ہے خوشی مناؤ۔
1: نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: 101 FM
1: Gook Studio, Season 14.

101 FM

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और कनाडा ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया है। ईरान के वज़ीर दाखला पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में हैं। अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी सूबे नूरस्तान में शदीद सैलाब से 20 अफराद जान बहक हो गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 19 साल से कम उम्र ख्वातीन टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का 4th T20 कल कराची में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

This is FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101.

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और कनाडा ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का मुश्तरका अज़्म जाहिर किया है। ईरान के वजीर दाखला पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में हैं। चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट शोबे के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। और गजा पर इसराइल के ताजा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और कनाडा ने तिजारत सरमायाकारी और अवामी रवाबित के फरोग के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अपना मुश्तरका अज़्म जाहिर किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: रमेश जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ आपके अपने आरजे ज़ुबे शफीक। आपके अपने प्रोग्राम लेडीज लाउंज में 11:04 हो चुके, मेरा आपका साथ रहा करता है और मंगल की सुबह 11 से 1 और आज वादे के मुताबिक मैं आपके साथ शामिल हूँ, हाजिर हूँ आपके साथ। और जब बंदा बहुत ही देर से कहीं आके बैठा हो ना और फिर उसके बाद उसको अपने आप अपना आप पुराना फील होना शुरू हो जाता है, यही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं कब से आज स्टूडियो में आई हूँ, यानी कि मैं तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और वो कुछ चीज़ें करनी थी, कुछ सेटिंग करनी थी, वो कर रही थी और फिर मैं अभी जब माइक पे आई हूँ मुझे लगा कि मैं दोबारा से आई हूँ। एनीवेज जी, वेलकम करते हैं आप तमाम को और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मौसम की सूरत हाल लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में तो मौसम की सूरत हाल काफ़ी खुशगवार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर था बाहर जब मैं बाहर से आई हूँ, बारिशें हर जगह पर हो रही हैं, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मॉनसून का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है और मॉनसून की अगर हम बात करते हैं, बरसात की अगर हम बात करते हैं, तो बरसात में जहां बहुत सारी खुशियां बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं वहां पे बहुत सारे अलर्ट्स भी होते हैं, यानी कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आपने अपने आप को महफूज रखना है क्योंकि आने वाले जो डेज़ हैं, आने वाले जो दिन हैं उसमें बारिशें ज़्यादा होने के खतरात हैं। और इसके साथ NDMA सैलाब अलर्ट भी जारी हो गया है। मरी गलियात पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में शदीद तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है और जो लोग अभी जाना चाहते हैं ना दूसरे मकामात पर पहाड़ी इलाकों में, तो वो अभी कुछ वक्त जो है ना वो रुक जाएं, यानी कि ये अब है क्या इसे कहते हैं जुलाई है, तो जुलाई और अगस्त ये 2 महीने जो है ना वो नहीं है सैर सपाटे के उन मकामात पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है। इसके अलावा जो दरियाओं के मुलहका इलाके हैं चनाब, जेहलम और काबिल, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी अपने इर्द गिर्द, अगर वो उनके इर्द गिर्द अपने कोई रिश्तेदार है या लोग हैं वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे जो मुकामी लोग होते हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। क्योंकि सैलाब जब आता है तो सैलाब आने के खदशात इन इलाकों में ज़्यादा होते हैं, बड़े शहर लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी, इधर भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो बारिशों में मॉनसून में ख़ासकर जब बरसात आती है तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब हम छोटे होते थे ना तो तब क्या होता था, तब होता ये था कि हमें सिर्फ यही होता था कि बारिश आई है इंजॉय करना है, लेकिन अभी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें अलर्ट हो जाती हैं, आपकी सेंसेस जो हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि ये चीज़ें जो है ना अगर होंगी तो इनके साथ ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए बारिशों में जहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, यहाँ ये भी ख्याल रखना है कि आपने ख़ुद को महफूज कैसे रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे काम करेगी, वो करती ही हैं, लेकिन आपने ख़ुद भी अपना ख्याल रखना है। जिन जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है या बताया जा रहा है, बार बार ये तंबीह की जाती है, वो लोग अपने सामान जो कीमती सामान है उसको या तो कन्वर्ट कर लें कहीं या उसको संभाल लें ताकि एकदम से जो है ना वो मसले मसाइल ना हो। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये बारिशों को रहमत की बारिश बनाए ना कि जहमत की हम तमाम के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं एक अदद कलाम से। पोस्ट में अपडेट कर चुकी हूँ, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आपने जाना है, वहाँ पे जो पोस्ट है उस पे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर कर दिएगा उसे, बताइएगा आप कहाँ से सुन रहे हैं, बताइएगा आपके इर्द गिर्द कैसा मौसम है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं बरसात को। इसके साथ साथ बरसात के हवाले से कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको मैं जरूर आपके साथ
1: पार चना दे दे से खुली यार दी
0: घड़िया शेयर जरूर करूंगी, लेकिन तब तक ये सुनिएगा।

को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सेहत की बात करें तो बरसात के मौसम में चूंकि आपकी हड्डियाँ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, गट हेल्थ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बाहर के खाने जितने हम खाते हैं ना अच्छे बहुत लग रहे होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन आपने उनसे थोड़ा सा परहेज़ करना है बिकॉज इस मौसम में बहुत सारी मक्खियाँ और इस तरह की जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो खानों पर बैठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया वगैरह होने के चांसेस होते हैं, हैज़ा वगैरह कुछ लोगों को हो जाता है, डायरिया हो जाता है, गट हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाना, और इसके साथ जब ये सारे मामला होते हैं तो आपके ऑलरेडी चीज़ें एक सेंसिटिविटी में चल रही होती हैं और साथ में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को चोट लग गई है ना तो इस मौसम में उस चोट को या तो बहुत ज़्यादा बंद नहीं रखना है आपने, फिर भी वो ख़राब होने के चांसेज होते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ देंगे फिर भी ख़राब होने के चांसेज होते हैं, इसलिए उसको साफ सुथराई का जो ख्याल है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पे अच्छा ये वाले वो मौसम होते हैं, पता नहीं मैंने मैट्रिक में कि फर्स्ट ईयर में एक वो स्टोरी हुआ करती थी जिसमें वो दो बहनें होती हैं और एक बड़ी सुगड़ होती है और एक जो है ना वो थोड़ी सी मेरे जैसी होती है, उसकी चीज़ें वो जो घर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये वो मौसम होते हैं। अगर आपको याद हो या अभी भी होता है ऐसे कि अम्मियाँ जो है ना वो जब धूप निकलती है तो अपने बिस्तरों को, पेटियों को, जो आपकी अलमारियाँ होती हैं, जो कपड़े होते हैं जो काफ़ी टाइम से पड़े होते हैं, उनको एक जगह से उठा कर दूसरी जगह उनको खोल के उनको हवा लगवाते हैं और फिर उनको दोबारा रखते हैं, बिकॉज इस मौसम में फंगल और फंगस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको काई कहते हैं ना, काई लग जाना, ये ख़राब हो जाना, ये सारे मामला होते हैं। जो आपकी दालें शाले हैं या आपके जो इस तरह के मटेरियल है जो आपने किचन में रखा होता है ना, इस तरह का जो मटेरियल है उसको भी साफ़ सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आटा जब आप गूंथते हैं ख़वातीन के लिए, खासकर लेडीज़ लाउंज है तो लेडीज़ लाउंज में कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूड करके आपको बतानी चाहिए। ख़वातीन खास करके जो ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो आटा जब गूंथती हैं तो उसको ज़रूर देखभाल के उसको छाना ज़रूर करें। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है वो उसको साफ़ नहीं करती, वो छानती नहीं है उसे, वैसे ही वो कहते हैं अच्छा जी ये तो साफ़ होता है, इसमें तो कुछ नहीं होता इसमें, या वो जो भूरा सा होता है वो नहीं होता तो इसको वैसे ही गूंथ लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इस मौसम में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनकी अफजाइश में भी इजाफा होता है। मतलब आप कह लो कि नॉर्मल अगर वेदर में एक से दो उनकी हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है, इस मौसम में एक से चार में हो रही होती है, इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी तरह कोई इन्फेक्शन होता है ना वो भी तेजी से, आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से, जिन लोगों को आपके कोई स्किन के डिजीजेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के अलर्ट जो होते हैं ना वो बरसात के मौसम में, बरसात जहाँ बहुत सारी खुशियां लेकर आती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, वहां भी इन चीजों को भी साथ लेकर आती है। साफ सुथराई का लाजमी तौर पर ख्याल करें, कूड़ा करकट जो है ना वो अपने बास्केट्स में फेंकें, और बास्केट्स से जो है ना वो आते हैं आपके मोहल्ले में जो भी कूड़ा उठाने वाले, उनको लाजमी तौर पर दें, और अपने घर को साफ ज़रूर रखें, अपनी गली को साफ रखें। आप अपने घर को और अपनी गली को साफ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे तो यकीन जाने बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जहाँ जब बारिश आती है तो बाज़ मुकामात पे सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया जाता है, और जब सैलाब आता है ना तो बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके आने से पहले उनकी प्रिकॉशंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूर करें। मुझे साथ में ये बताइएगा ज़रूर कि आपके आपको क्या लगता है यार, मेरा आज ना सुबह आप बिलीव करती हो मेरी सुबह आँख खुली है ना तो मैं हलवा पूरी के नाश्ते से मेरी आँख खुली, यानी कि मेरा दिल इतना ज़्यादा शदीद क्रेविंग हो रही थी, शदीद वाली क्रेविंग होती है ना कभी कभी, वो मुझे हलवा पूरी और मीठी लस्सी की हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि मेरे मामू मेरे ने आना था इस साइड को, तो मैंने कहा मामू मुझे भी साथ ले जाएं, उन्होंने जल्दी जाना था, मैंने उन्हें कहा कहते मैं तुम्हें ना पैक करवा देता हूँ, मैंने कहा यार पैक करवा के मैं कहाँ बैठ के खाऊँगी क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं मुझे आई, मैं कहा चलो रहने दो फिर, लेकिन वो क्रेविंग इस कदर है ना कि मेरे दिमाग पे वही है। मैं कह रही हूँ अब मैंने यहाँ से 1 बजे जब निकलना है तो क्या, मैं पूछ रही थी अपनी फ्रेंड से भी, मैंने कहा यार ये 1 बजे जब 1 बजे के बाद भी हलवा पूरी होती है, मुझे ज़रा ये भी तो कमेंट्स में बताएं 1 बजे के बाद क्या हलवा पूरी होती है, मुझे नहीं लगता है वैसे होती है, लेकिन जितना अच्छा मौसम हो गया है हलवा पूरी को होना तो चाहिए 1 बजे के बाद, मतलब यार मौसम है ना ये हलवा पूरी का तो उसमें होना चाहिए। आपने मुझे ये बताना है कि आपकी आपको आपकी फेवरेट डिश कौन सी है इस मौसम में, वैसे इस मौसम में जो है वो मीठे पूरे भी बनते होते हैं पता है। वायरल म्यूजिक।

इस मौसम में मीठे पूरे भी बनते हैं और इस मौसम में कुछ लोग जो हैं वो खाते हैं, क्या उसे कहते हैं, बेसन वाले नान और समोसे, पकोड़े, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तो आपके घर में आपकी फेवरेट कौन सी डिश है जो आपको लगता है कि इस मौसम के हवाले से बहुत अच्छी है और वो बनती है?

जी वेलकम बैक और 11:31 आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं जुबैर शफीक. आज हम बात कर रहे हैं जी बरसात के मौसम के हवाले से. आप तो मुझे ये बताना है कि इस मौसम में आपकी पसंदीदा या आपका पसंदीदा मशगला मुझे बता दें कि आपका पसंदीदा आपकी फेवरेट हॉबी इस मौसम के हवाले से क्या है. आपको क्या लगता है कि इस मौसम को किस तरह से इंजॉय करना चाहिए और इसके साथ मुझे आपने ये बताना है कि क्या बना रहे हैं आज. अभी मुझे हनीफ साहब की कॉल आई, कहते हैं जी आज हम कढ़ी पकौड़ा. वाह क्या बात है. मैंने पूछा था, मैंने कहा मुझे बताएं कि हलवा पूरी पूरा दिन मिलती है. कहते हैं जी जी पूरा दिन आपको जो है ना वो हलवा पूरी अवेलेबल होती है कुछ स्पेसिफिक जगह पे, कुछ स्पेसिफिक होटल पे. अच्छा नॉर्मली होता है ना, नॉर्मली जो हलवा पूरी वाले होते हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30-11:12 तक हलवा पूरी चलती है और उसके बाद चेंज हो जाता है मामला. फिर दोपहर की चीज़ें या नान चने या इस तरह की चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक. लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आपके स्पेसिफिक कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है. मेरे साथ तो अक्सर पता क्या होता है कि जो चीज़ खाने का मेरा दिल कर रहा है ना, इवन दो आप कहें कि मेरा कोई कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है, तो मुझे वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक की शॉप नहीं नज़र आनी जहाँ मैंने होना है. कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है तो हम घर में अक्सर मजाक करते हैं कि भाई हमने वो चीज़ खानी है जो हमने कह के नहीं खानी, वो चीज़ मिल जाएगी, जो कह के खानी है वो तो नहीं मिलेगी. कभी कभी बस इस तरह के मामला चल रहे होते हैं. आपने मुझसे आपने हमारे साथ शामिल होना है जी FM 101 के ऑफिशियल पेज पे. आपने जाना है, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करना है. यार कंवल है ना दिल कर रहे हैं ना आज, मेरा यकीन मानो वहाँ दिल कर रहा है आज. कहती हैं बस करो जुबिया, मुंह में पानी आ गया. मेरे नाल भी यही कुछ हो रहा है कुड़िए, मेरे साथ भी यही मामला हो रहा है. और मैं जो है ना चले खैर यहाँ से जब निकलेंगे तब देखेंगे फिर क्या करना है. अगर हमारी किस्मत पे आज हुई ना तो फिर हम खाएंगे. अच्छा मेरे साथ लिटरली लास्ट 10-12 दिन से यही मामला हो रहा है. सुबह सुबह मेरा दिल करता है फिर उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा चलो छोड़ो रहने दो. फिर आज मैंने तहिया कर लिया. एनीवेज जी आपके कुछ पैगाम हैं जिनको मैंने शामिल करना है. क्या ख्याल है, पैगाम शामिल करूँ थोड़े से या फिर नाम ले लेती हूँ अभी पैगाम आके शामिल करूँगी. अभी एक गाना लगाऊंगी मैं. बारिश के हवाले से आपने बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. और एक और बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, लाजमी तौर पे अपने जहन में बिठा लीजिएगा. हमने आज का टॉपिक रखा है कि बरसात के हवाले से आप मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट मशगला क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या दिल करता है कि आप बरसात के मौसम में, बारिश हो रही हो तो बारिश में जब बारिश होती है तो पहला ख्याल क्या आता है, जहन में पहली चीज़ क्या आती है. बचपन की वो बरसात याद आती है. मुझे याद है मेरी मैट्रिक एग्जाम्स हो रहे थे, बरसात का मौसम था और मैं पढ़ रही होती थी ना रात को, तो एक दफ़ा रात को तकरीबन 2:30 बारिश हुई, मुझे बारिश की आवाज़ आई और मैं पढ़ रही थी. तो मैंने क्या किया, बुक्स उधर ही रखी और मैं छत पे नहाने चली गई. मेरी अम्मा मुझे ढूंढ रही है, कोई ना 3:30-4:30 बज गए और मुझे ना दूर से आवाज़ मेरी अम्मा की आई, मतलब वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर मुझे आवाज़ें दे रही है और मैं कोई नहीं सुन रही हूँ, मुझे पता पुता कोई नहीं चल रहा है कि कौन आवाज़ें दे रहा है. काफ़ी टाइम मुझे कहीं वो आवाज़ें देती रही और मैं नहा रही थी बारिश. एकदम से ना किसी ने आके पीछे से मुझे ऐसे पकड़ा, धक्का दिया मुझे जैसे, वो कहने ना खुत्ती दे विच मारी मेरे. मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी अम्मा ओए होए होए होए होए दीप तुम पागल हो, तुम्हें ठंड लगवानी है, कल तुम्हारा पेपर है. मुझे वो आज तक याद है, डर गई ना एकदम से मैं. मैंने कहा इस टाइम पे कौन. और डर इस मामले में मैं थोड़ी सी हुआ करती थी, जब मुझे डर नहीं लगता था तब मुझे नहीं लगता था, जब लगता था तब मुझे अपने कमरे में भी डर लग रहा होता था. पता नहीं ऐसा क्यों होता था मेरे साथ. तो बरसात के जब आते हैं तो बचपन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, यानी कि अब जब बरसात होती है तो आपको हर घर से बिरयानी की, पकौड़ों की, समोसों की, इस तरह की खुशबुएँ आ रही होती हैं. जैसे हनीफ साहब ने कहा कि उन्होंने आज कढ़ी चावल बनाए, तो डेफिनेटली साथ में वो पकौड़ों को भी इंजॉय करेंगे, चटनी को भी इंजॉय करेंगे, चाय को साथ इंजॉय करेंगे.

इसके साथ साथ आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि टॉपिक आपको पता चल गया इस टॉपिक के हवाले से, या इस टॉपिक से रेलिवेंट आप बात कर सकते हैं, बरसात के हवाले से बात कर सकते हैं, अपनी कोई बात कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है प्लीज आपने टॉपिक को, आपने इधर उधर लेकर नहीं जाना है चीजों को। कोशिश ये कीजिएगा अपने से रिलेट करती बात कीजिएगा, अदर साइड की कोई बात ना कीजिएगा, अदरवाइज मुझे आपकी कॉल कट कर देनी पड़ेगी। एक सिस्टम जब चल रहा होता है ना, एक सिस्टम जो चला रहा होता है उसको पता होता है क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, तो इंस्ट्रक्शंस जो है ना, हर बंदे का एक काम होता है ना उसको बेहतर तरीके से पता होता है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस मोड में कोई मुझे कॉल करे तो वो ना आज कीजिएगा बराए मेहरबानी। टू द पॉइंट टू द टॉपिक रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, बात करते हैं।

वेलकम बैक जी, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो। मुझे हमारा बेक की अभी कॉल आई कहती है बाहर इतनी شدید बारिश हो रही है। अच्छा, बरसात में ये भी बड़े मामलात होते हैं ना कि एक घर में बारिश हो रही होती है, दूसरे घर में नहीं हो रही होती, यानी कि एक मोहल्ले में हो रही होती है, दूसरे मोहल्ले में। अच्छा, ऐसे भी मैं देखा हमारे घर में हो रही है, सामने वाले के घर में नहीं हो रही। देखिए, कुदरत है ना, ये सारे इस तरह की चीजें। रेनबो बड़ी आती है, रेनबो देखी बचपन में किसी ने, वो सतरंगी जो होती है, वो सेवन जो उसके कलर्स होते हैं, और वो आसमान पे बड़ा निखार आता है उससे जब धूप निकलती है, जब बारिश खत्म होती है। तो कहती हैं कि आपने कड़ी पकौड़े का जिक्र किया तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आज कड़ी पकौड़ा बनाते हैं। अच्छा, मैं ना आज आपको कड़ी की एक सिंपल सी रेसिपी बताऊँ। वैसे तो मैं अक्सर वो बन जाती हूँ, वो जो टोटके बताती हैं, तो मैंने कहा चले आपको आज ना सिंपल सी कड़ी की एक रेसिपी बनाती हूँ। बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी, अगर आपने नहीं अप्लाई करनी तो, या आपके पास टाइम नहीं है ना, शॉर्ट कट में आपको एक रेसिपी बताती हूँ। विद इन हाफ आवर और 45 मिनट के राउंड अबाउट ये कड़ी तैयार हो जाती है, इससे भी पहले तैयार हो जाती है। इसमें आपने पता क्या करना है, आपने लस्सी लेनी है, यानी कि दही लेना है, दही को फेंटा लगाना है, उसमें आपने अब वो थोड़ा सा टर्मरिक डालनी है, यानी कि हल्दी थोड़ी सी डालनी है, उसमें बेसन डालना है, उसको अच्छे तरीके से आपने फेंटा लगाना है, फेंटा नहीं लगाना, उसको फेंटना है, फेंटना, वो वाला फेंटना नहीं है, वो भी तो बोलो ना कि हाँ मुझे समझ आ गई, हाँ उसको आपने जो है ना वो मिक्सअप करना है। उसके बाद उसमें पानी थोड़ा सा डाल के उसको मिक्सअप कर दिया, उसको आपने चूल्हे पे डाल रख दिया, ठीक है। अब उसके अंदर आपने थोड़ा सा प्याज डाल दिया, आपने थोड़ा सा डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अंदर आपने ना आलूओं के स्लाइस काट के डालने हैं, समझ रही हैं ना, आलूओं के स्लाइस काट के डालने हैं, थोड़ा सा आप बाकी के आपने मसाला जात सारे डालने हैं, उसको रख दिया पकने के लिए। लें जनाब, उसको पकने दें, वो पकेगी 15-20 मिनट में, आपकी कड़ी ये तैयार। ऐसी कोई लेवल की ऐसे मुंह बना रही है, इतनी कोई लेवल की कड़ी तैयार होती है, आप मान जाएंगी। कैलोरीज भी बहुत कम, कैलोरीज कम इस सेंस में उसमें तड़का नहीं लगा होता, दूसरा उसमें पकोड़े शामिल नहीं होंगे, उसमें आलू जो होंगे ना वो पकोड़ों का वो करेंगे। जब आप पकोड़े बनाते हैं बेसन के साथ, तो वो भी कौन सा उसके अंदर जाके क्रंची रहते हैं, वो भी आपकी वो पेस्ट टाइप ही बन जाते हैं ना, वो हो जाते हैं थोड़े वो नरम से हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो जो आलू और वो प्याज होंगे ना, वो आपको देंगे टेस्ट पकोड़ों का, जो आपने रखा होगा ना बेसन और दही का वो मिक्सचर, वो कड़ी का वो मिक्सचर बन जाएगा, और वो इतनी मजे की कड़ी बनती है ना कि आप भी सोचोगे। 20 से 25 मिनट हार्डली लगते हैं और कड़ी बन के जनाबे आलिया तैयार। ए तुसी ले आओ चिट्टे चावल बनाओ नाल, वाइट राइस, यू नो वाइट राइस बनाए, साथ में आप ये कड़ी खाएं, और मुझे दुआएं दें, मेरे लिए भी भेज दें थोड़ी सी, मैं अभी 1 बजे तक यहाँ पे ही हूँ। तो ये रेसिपी जो है ना, ये अच्छा, ये मेरी एक फ्रेंड है, वो रहती हैं वो कसूर वाली साइड पे, हमारा जाना हुआ उनकी तरफ, मौसम अच्छा हो गया तो उनकी अम्मा ने कहा कि कड़ी खानी है। मैंने कहा आंटी अब बनाएंगी 2.5-3 घंटे, अब मेरी दादो, माशाल्लाह मेरी दादो कहा करती, अल्लाह ताला उनको कड़ी की रहमत करे, उन्होंने कहा ना कड़ी वो जड़ी कड़के बने, तो मतलब उन्होंने रख दिया, ये दोपहरों 2 बजे से कड़ी तैयार हो रही है, शाम के 7 बजे कहीं जाके कड़ी बनी है। मारे माइंड में हमने कहा आंटी अभी 1.5 घंटे में हमने चले जाना है, कहती है ले ये 1.5 घंटे तो बहुत दूर है, 1.5 घंटे में कड़ी तैयार है। फिर उन्होंने अच्छा उनके यहाँ गैस भी नहीं थी, लकड़ियों के चूल्हे पे उन्होंने जो है ना वो कड़ी तैयार की, और क्या कमाल, मैं कहती हूँ चस आ गई। तो ये जो है ना रेसिपी बहुत ही कार आमद है, इसको आपने अप्लाई करना है, जिसके पास टाइम नहीं है ना, खासकर जो ऑफिस जिन्होंने जाना होता है, ये जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनके लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है।

इसके साथ साथ आपके पास भी कोई ऐसी रेसिपी हो ना जो आपको लगे कि इंस्टेंट बनती है, वो भी आपने मुझे बतानी है। हमें हमारा बेग ने अभी कॉल की थी, उन्होंने एक सॉन्ग कहा था, सॉन्ग की फरमाइश की थी हमारा, मैं वो सॉन्ग लाजमी तौर पर लगाती हूँ अभी। कुछ पैगामात आपके जिनको मैं साथ में शामिल करूंगी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया या जो साइलेंट लिसनर है ना, वो भी आज अपनी चुप का ताला तोड़ दें और मुझे मैसेजेस करें। मैसेजेस करके बताएं आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है, आपका क्या दिल करता है कि इस मौसम में इस वेदर को कैसे इंजॉय करना चाहिए, ये मुझे आपने बताना है। और यहाँ पे मैसेज आया अदील अहमद का, सलाम अलैकुम, आप भी वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं शबनम फ्रॉम बलोचिस्तान। ओके, बलोचिस्तान का मौसम कैसा है ये भी बताओ शबनम। वाओ, वेलकम टू द शो सिस्टर, मैं शबनम। ओके, शफकत अली खान में हमारे साथ है, थैंक यू। अकबर खान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी। हमदुल्ला मला खेल है, इनकी बुलंद तरीन सतह ये है कि वो जुबान से नहीं किरदार से जाहिर होता है, कमाल हो गया। हमदुल्ला मला खेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मला खेल फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू द शो। वेलकम जी, वेलकम। अकबर खान कहते हैं दाना लोग रफ्तार से नहीं, ज्यादा सही असमत को देखते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के 100 कदमों से सोच समझ कर उठाया गया एक कदम ज्यादा कीमती होता है। बहुत अच्छी बात। कमल नाज आगे जी पंजाब यूनिवर्सिटी से अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं सत बिस्मिल्ला, कैसी है वो लड़की? मैं ठीक हूँ लड़की, आप कैसी हो? कैसा चल रहा है? क्या नाश्ता वश्ता किया आज? दसो जरा मैनु। वैसे यार मुझे ये भी बताएं आपने क्या नाश्ता किया आज? मैंने तो किया नहीं, चलो आप मुझे बता दो, मैं ऐसे ही खुश हो जाऊंगी। देखिए मेरी मासूमियत, मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ, आप मुझे बताएंगे ना मैं खुश हो जाऊंगी। अच्छा चलें कोई नहीं, आपने खा लिया ना। अच्छा कई लोगों को जो है ना वो जो होती हैं पूरियाँ होती हैं, हलवा पूरी में पूरियाँ जो होती हैं वो पसंद आती हैं उसके साथ हलवे के साथ, और कई लोगों को पसंद आती हैं उसके साथ चनों के साथ। आपने कभी नान वाले चनों के साथ पूरी खाई है? आपको क्या लगता है कि वो वाली पूरी ज़्यादा, वो वाले चने ज़्यादा मज़े के होते हैं या फिर जो पूरी के साथ चने होते हैं वो ज़्यादा मज़े के होते हैं? गिव मी आंसर। वो कहते ने चने दे होन केड़े भी होन तुसी ले आओ भावे वो वाले होन

स्टिक अराउंड जी, मैसेजेस करिए, कमेंट्स कीजिए। नहीं पता कैसे करना है, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइए, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पे कमेंट करके वैसे शामिल हो जाइए।

0: Free socks. And now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Welcome back. This is FM 101. Hello, studio. It's me, Zubia Shafiq. तो जनाब आज हम बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से, मौसम से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से. और मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या बनाने के प्लान हैं आज, क्या पकवान शकवान बना रहे हैं. और आज के हवाले से या बरसात के हवाले से आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, ये मुझे आपने बताना है. कुछ पैगाम आपके शामिल करती हूँ. आई एम रजा चौधरी साहब आ गए हैं जी. ओके ताहिर अब्बास कहते हैं नाइस. कमल कहती हैं अल्लाह करे हलवा पूरी वाला को ही आपका शो सुना. नहीं कहां, ऐसे थोड़ी होता है. कोई मतवाली घटा थी कि जवानी की उमंग, जी बहा ले गया बरसात का पहला पानी. ओए होए कमाल कर देता. कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थर आ रहे थे मगर बात हो गई. मैनू रात का प्रोग्राम ना तुसी दे दवो, इत्थे बह के वाह मैं शायरियां सुनांदी रहांगी. थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया. इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू, योर प्रोग्राम इज वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड स्टाइल, योर वॉइस इज वेरी ब्यूटिफुल. मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस एंड वेरी एवरी सक्सेस. I am listening to you from Iftikhar Ahmed City, Bahawalnagar Village, Sanataka. पता नहीं मुझे नहीं ये नाम नहीं आ रहा. Thank you so much Iftikhar. और जी कवल कहती हैं कि रहती है शबो रोज में बारिश सी तेरी याद, ख्वाबों में उतर जाती है घुंघरू सी आंखें. देखा फिर ऐसे करेंगी तो फिर ऐसे ही होगा मेरे साथ. यार मेरी पोइट्री अच्छी है पर इतनी अच्छी नहीं है. हाँ मुझे कुछ ज्यादा ही ख्वाबों में उतर जाती हैं घंघूर सी आंखें, घंघूर सी आंखें. ओके अच्छा जी, यहाँ पे ना हमें पैगाम आया कि इनका फरा अफजल. अच्छा जी तुसी भी हैगे हो तुसी सुनदे हो, आपके पास टाइम मिल गया आपको. कहती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, लिसनिंग टू यू आफ्टर लॉन्ग प्लेयर लिसनिंग टू यू. कैसा मौसम है फरा, फरा जी कैसा मौसम है कराची का, कराची का कैसा मौसम है कराची का, ये तो मुझे बताएं जरा. मोहम्मद हमजा, अच्छा कभी आपने बचपन में वो सिपारा पढ़ाते हुए वो करे खा निकालो, खा आइन ऑफ निकाले थे ये अल्फाज. कमेटा हमारे साथ है जी, बहुत शुक्रिया. रेहाना खान बक्कर से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी. और रेहाना कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान बक्कर से. 04211100101 हमारा डायलिंग नंबर है. मैं आपसे आज पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है मौसम के हवाले से, आपने बात करनी है, आपने मुझे बताना है कि इस मौसम में आपका क्या दिल करते हैं, आपने बताना है कि आपके घर में क्या पकवान बन रहा है, कौन सी चीज़ पसंद है, ये बात करनी है, इससे रिलेटेड बात करनी है, अपने से रिलेटेड बात करनी है. इधर उधर से बात करेंगे, फ़ौरन से कट करूँगी कॉल. बात चो ना कहना कि हाँ जी जी सानू गुस्सा है, नाराज़गी है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, फरीद जी लाहौर से बात कर रही हूँ.
0: फरीद जी हाँ जी,
1: बात करूंगी. मीठे पकौड़े बनाने हैं.
0: मीठे पकौड़े बनाने हैं, वेरी गुड. अच्छा मीठे पूड़े बनाने हैं, बस ठीक है. इधर वाल नु भी तोड़ देना थोड़े जे. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच परी जी, बहुत शुक्रिया आपका. मीठे पूड़े बनाने हैं, बस आज मैंने यही पूछने आपसे क्या बनाने हैं और किस हवाले से जो है वो आपने बात करनी है. अस्सलाम वालेकुम जी.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: खान बाबा, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक. आज हम जो है ना गोश्त और खिचड़ी बना रहे हैं.
0: गोश्त की खिचड़ी?
2: हाँ उसमें गोश्त डाला जाता है ना.
0: अच्छा, ये मोटे मोटे जैसे पुलाव होते हैं, पुलाव की तरह की होती है ये?
2: नहीं पुलाव की तरह नहीं होती है बेटा, ये खिचड़ी होती है. खिचड़ी मूंग होते हैं, चावल होते हैं और मोटी मोटी हड्डियों वाली जो गोश्त होता है ना वो उसमें डालते हैं. तो खाओ खाओ तो और क्या नाम है, अश अश वाह वाह करती रहोगी.
0: अच्छा जी,
2: आपने कभी खाया ही नहीं है?
0: नहीं नहीं नहीं
2: नहीं खाया. वेरी बैड लक, वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड न्यूज. आपको खाना चाहिए, मम्मा को कहो बना कर दे जल्दी जल्दी. ओके अल्लाह हाफिज़.
0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: हाँ जी, किया ना फिर एंजॉय, आया ना मजा, चस आ गई ना, ऐसे ही होता है। फिर शहजाद साहब हमारे साथ कॉल पे थी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: अस्सलाम वालेकुम जुबिया पी
2: जी,
3: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो लड़की, ना होने वाली स्टूडेंट?
3: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। आप ही
2: बिस्मा? मैंने पहचान लिया।
3: कॉल कर करके मैं थक गई थी और ये गलती से मेरा यस पे बटन दब गया। मैंने कहा अब मुझे लगता है आज मेरी कॉल है मिलने वाली। मैंने कहा इतना टाइम खुला, मैं लगे रहो कौन सा काम कर रही हूँ, पकौड़े तो मेरी छोटी बहन बना रही है ना।
2: अच्छा,
3: कि तुम बनाओ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बनाने, उसको बोलो सुबह नाश्ता करवाया ना, बस ठीक है मेरी बारी, मैंने अपना कर लिया।
2: हाँ।
3: तो सुबह मैंने नाश्ता पता क्या बना के इनको दिया?
2: क्या?
3: आप कह रही थी ना इंस्टेंट रेसिपी।
2: हाँ।
3: तो बताओ मेरी हार्ट भी तेज हो गई है। मैं बताती हूँ आपका, सुबह
2: भाग के आई हो कहीं से?
3: नहीं नहीं, वो एकदम से आपने कॉल उठा दिया, हो गया।
2: अच्छा ठीक हो गया जी।
3: तो ना वो ना मैंने इनको ना इंस्टेंट वो ब्रेड बना के, वो जो होता है ना मीठी ब्रेड होती है ना आपने खाई,
2: ओके, अंडा लगा के,
3: अंडे लो, हाँ अंडे
2: और दूध,
3: उसमें चीनी डालो, मिक्स करो, और ये जो दूध डालते हैं ना, दो मैं आपको बताती हूँ, दूध डालने से ये होता है कि वो जो पीस होते हैं ना ब्रेड होते हैं वो लूज लूज हो जाते हैं।
2: ओके ओके,
3: मजा नहीं आता मुझे वो खाने का। आप ना पता क्या करो, अंडे लो, उसमें चीनी डालो, जितना आपने मीठा रखना है ब्रेड को, उसको अच्छे से फेंटो, मतलब उसको फेंटा जाओ,
2: फेंटा, हाँ फेंटा लगाओ,
3: उसको अच्छे से मिक्स करो, और ना उसके अंदर ना खुशबू के लिए आप सबस इलायची होती है ना, पाउडर डाल दो, नहीं है तो इंस्टेंट, यानी कि खुशबू के लिए ये ऑप्शनल है,
2: ठीक है।
3: उसमें ना वो जो होता है ना वनीला एसेंस, उसकी कुछ ड्रॉप्स डालो, ज्यादा नहीं डालने, फिर वो कलबल कलबल गंदा गंदा टेस्ट आता है।
2: गुड हो गया, गुड हो गया।
3: बना के ना उसमें वो डिप करके इस तरह उसको फ्राई करके बनाओ, और साथ में ना हो जाए के साथ खाओ, इतना मजा आता है। अगर आपको मीठा पसंद है फिर ये बहुत अच्छी रेसिपी है।
2: वेरी गुड।
3: लोगों को मीठा नहीं पसंद होता ना?
2: हाँ हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी तो पसंद होता है।
3: आपको पसंद है?
2: हाँ कभी कभी, कभी कभी
3: बना के खिलाऊंगी फिर।
2: डन हो गया, डन हो गया।
3: और पकौड़े इसमें ना मौसम में अच्छे होते हैं, क्योंकि नमी वाला मौसम होता है तो पकौड़े खुश्क होते हैं ना,
2: हाँ
3: बेसन वगैरह, तो ये बनाए जाते हैं, ये अच्छे होते हैं।
2: बिस्मा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
3: जो सैल्मन वाली जो रेनबो होती है आसमान से आती है, ये किस टाइम आती है?
2: ये जब बारिश रुकेगी ना, बारिश रुकती है, थोड़ी सी धूप आती है, तो फिर ये रेनबो आती है।
3: आज जैसा मौसम है ना जिस तरह का, मतलब इतनी ठंडी,
2: अभी तो 2-3 दिन बारिशों का अलर्ट है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे।
3: मौसम है ना, और सेम आप वैसी हो, आज सही मैच हो रहा है,
2: है ना, है ना, लॉन्ग ड्राइव का दिल कर रहा है ना फिर।
3: थैंक यू,
2: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिस्मा। हमारी बड़ी क्यूट सी, हमारी स्वीट सी एक कॉलर है बिस्मा, वो हमारे साथ ही बड़ी मजे की रेसिपी बताई। सज्जाद अली लाडला आ गए हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी आयानु, और वेलकम टू द शो, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सुनते समातों को सलाम कहते हैं। वाओ तुसी ऑन एयर आ गए, ग्रेट आरजे, वो भी लवली डे एंड हैप्पी रिमझिम वाली मॉर्निंग में आप ऑन एयर, वाओ वेलकम, ओके। कहते हैं तबीब थक चुका मगर ये घाव भर नहीं, ना करो मुंडिया आज तो रहम करो मुझसे। वाओ तुसी ऑन एयर आ गए, ग्रेट आरजे, वो भी लवली डे एंड हैप्पी रिमझिम वाली मॉर्निंग में आप ऑन एयर, वाओ वेलकम, ओके। कहते हैं तबीब थक चुका मगर ये घाव भर

0: मेनू कौन से दुख है आपको। माशाल्लाह हमेशा की तरह ग्रेट शो, नाइस वॉइस, नाइस अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला। 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी।
0: कौन हमारे साथ, कहां से?
1: बाबर अली बोल रहा हूं जी, फ्रॉम मलकन स्वात।
0: बाबर अली, फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने?
1: नहीं जी, पहले भी कई बार किया, लेकिन आप ऐसी वन पे काम कार कर रहे हैं हम।
0: ओके ओके, क्या कहेंगे बाबर अली, इस मौसम के हवाले से कौन सी चीज ज्यादा पसंद है आपको?
1: मौसम में बस मुझे तो बर्गर बहुत पसंद होता है।
0: इस मौसम में
1: जी?
0: ओके हो गया, ओके हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया बाबर, अल्लाह हाफिज़ जी।

0: अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि इस मौसम के हवाले से कौन सी ऐसी फेवरेट चीज़ है आपकी, आपने मुझे ये बताना है। 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्या
0: हाल है साजिदा, कैसी हो आप? जल्दी जल्दी लड़की मुझे ये बताओ कि इस मौसम के हवाले से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: पहले पहले तो मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी बारिश आती है पकौड़े खाते हैं।
0: ओके, हो गया।
1: हम आलू वाले पराठे बना रहे हैं।
0: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा।
1: पहला पराठा आपके लिए।
0: पहला पराठा मेरे लिए?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: वेरी गुड,
1: भेज दो।
0: थैंक यू सो मच। मैं क्या बस भेजो भेजो। बहुत शुक्रिया साजिदा, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का।
1: और बहुत मजा आपके शो का।
0: जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पे गाना मैंने कोई और लगाना था और लगने कोई और लगा था, और यहाँ पे जो है ना वो सारे मामलात खराब होने लगे थे अभी। एनीवेज जी, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है और वहाँ पे जाके आप जो है ना वो कमेंट कर देंगे, और जब कमेंट करेंगे ना तो वो कमेंट मेरे तक पहुँच जाएगा। हमें सुन रही हैं मिसेस आरिफ। हाँ, मिसेस आरिफ सुन रही हैं शादबाग से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मुबारक। ये गाना जो है ना वो मैं आप तमाम सुनने वालों के नाम लगाना चाहती हूँ, होपफुली आपको पसंद आएगा, और फिर इसके बाद वापस आएंगे आके आपके मजीद कॉल्स लेंगे। 04221100101 पे आपने हमारे साथ शामिल रहना है। वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल ट्रैक को विद ब्यूटीफुल वेदर। ऐसी सिर दा सौदा कर बैठे डॉक्टर नुमान हमें सुन रहे हैं, कहते हैं जी मैं आपका साइलेंट लिस्टर। ओके, हो गया, थैंक यू सो मच जी।

हमसे करो, हमसे कि इनसे करो, इनसे करो, ओके इनसे करो। हाय हाय, छा गई है कुड़ी है तू, इसीलिए तो कभी कभी मुझे मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ।

0: वैसे तो हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आती रहती हैं, और ये चेंजेस जो होती है ना, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी लगती हैं और बाज़ दफ़ा कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो हैरान कर देती हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक तब्दीली आई है, वो तब्दीली क्या है ये हम आपको बताते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में जिन साहब की आवाज़ सुनने को मिलेगी ना, आप कहेंगे कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये हम रात के टाइम में कहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि आप आए। लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं रात के कोई 11-12 बजे यहाँ बैठी हुई हूँ।
1: मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं रेडियो पे आऊँ, मुझे बुलाया जाए।
0: अच्छा।
1: और मतलब मेरा ख्वाब था।
0: अच्छा।
1: तो बस आज अचानक से वो पूरा हो गया।
0: हाँ।
1: और आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में।
0: अच्छा।
1: तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मेरा दिल जो है ना वो धक धक धक
0: कुछ खा के जाओ फिर कुछ खा के जाओ फिर
1: आज हम कस्में खाएंगे बड़ी बड़ी कस्में खाएंगे
0: ठीक
1: तो
0: हो गया,
1: वो उससे पेट भी भर जाएगा।
0: ये तो ना खिलाने वाली बात की आपने।
1: नहीं, हम खाएंगे ना कस्में। अच्छा। खाएंगे।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आज बाहर से आप आए हैं, बारिश हो रही है अभी?
1: इतना जबरदस्त मौसम है बाहर, इतना खूबसूरत मौसम है। अभी मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से बारिश शुरू हो चुकी है।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब मैं आया था तो हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, बादल हुए हुए हैं और पत्ते उड़ रहे हैं, शापर उड़ उड़ के आ रहे हैं मुंह पे। ओह, वो जो गर्मी का जोर था ना पिछले दिनों, वो टूटा है और मौसम बहुत बहुत बहुत रोमांटिक हुआ।
0: तो क्या दिल करता है वैसे ऐसे मौसम में, क्या जहन में आता है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए या फिर घर में आराम करना चाहिए?
1: बंदा सेन में मंजी डाए
0: ठीक है, अच्छा है ये, अच्छा है। हाँ।
1: मंजी डाए और उसके बाद सो जाए
0: बस, गलती खत्म हो जाती है
1: बाकी चीजों में ना खर्चा होता है बहुत ज्यादा,
0: और खर्चा हमने करना नहीं है
1: तो सो जाए बंदा।
0: नहीं, थोड़ी बहुत कोई समोसा, कोई पकोड़ा, कोई चाय शाय के ठेले पे चला जाए।
1: मुझसे आपने समोसा पकोड़ा की बात नहीं करनी डॉक्टर साहब।
0: डॉक्टर ने मना कर दिया पहले इतने नहीं खाने थे ना कि फिर डॉक्टर मना ही कर दे।
1: इस मौसम में ना एक तो म्यूजिक सुनने को दिल करता है,
0: ठीक है,
1: एक कोई खुशगवार सा मजेदार सा
0: कोई गाना बताए ना।
1: हाँ। और अच्छा, एक गाना है, पुराना गाना है और मेरा दिल कर रहा है वो सुनने को, एक सलीम जावेद का गाना था बारिश की चंद
0: लगा बुंदे। बैठी मैं आप
1: लगा दिया?
0: हाँ, लगा
1: ओ, हो। फिर आप लगाएं, एक फिल्म आई थी उसका गाना था बारिश की ये बूंदे, इस तरह का गाना था, बारिश से रेलिवेंट। मुझे याद करने लगे
0: आप याद
1: उतनी देर तक मुझसे कुछ और पूछें मुझे बहुत शौक है रेडियो पे बात करने का। आज जूबिया मैं आज बहुत खुश हूँ
0: वो खुशी आपके चेहरे से नज़र आ रही है ना अभी। मैं कोशिश करूँगी आपको थोड़ा सा लाइव में साथ, ऑन एयर में साथ लेने की। तो
1: नहीं, आज मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, मुझे लाइव रहने दें, वैसी बातें करें ना, मुझे रेडियो का शौक है, मुझे टीवी पे आने का शौक।
0: अच्छा, तो
1: नहीं।
0: क्या और क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे वैसे आपको मेरे प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है?
1: मुझसे कोई इंटरव्यू करे, मुझे बड़ा शौक है बचपन से मेरा कोई इंटरव्यू ले।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहा है।
1: हाँ।
0: आपको क्या लगता है कि आप जब यहाँ पे आए, आप में और जो अभी लोग, अभी बच्चे जिनको आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं, क्या चेंज है?
1: ये अब आपने एक सीरियस सवाल कर दिया हमसे। इस वक्त इंटर्नशिप आरजे एंड ब्रॉडकास्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहा है रेडियो पाकिस्तान पे, और इस वक्त भी जो क्लास है वो चल रही है, 12 से 3 बजे हमारी क्लास होती है हर मंगल और बुध को,
0: ठीक है,
1: और अप्रॉक्सीमेटली कोई 60-70 स्टूडेंट्स की हमारे पास स्ट्रेंथ है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक से एक बढ़ के। अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि जो इस किस्म के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जो इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पहले से कुछ नहीं पता होता, सिर्फ शौक होता है,
0: ठीक,
1: तो वो एक सिरा लेने के लिए, एक सड़क पकड़ने के लिए वो आते हैं, और फिर आके वो सीखते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक जाना है, और वो फिर अपने ट्रेनर से, मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं,
0: ठीक है।
1: हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर एक तो तमाम जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो मैच्योर हैं,
0: ठीक है,
1: वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, मैक्सिमम जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट हैं, और उनको पता है कि वो क्या सीखने आए हैं, क्या करने आए हैं,
0: वो आपसे सवाल करते हैं,
1: तो उनके जो सवाल होते हैं वो बिल्कुल भी ओंगे बोंगे सवाल नहीं होते, बड़े एक्यूरेट सवाल होते हैं, बड़ा टू द पॉइंट पूछते हैं, और वो जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिस चीज़ का उनको मसला है, वो एग्जैक्ट उस नस को पकड़ के ना सवाल करते हैं कि हमें ये बताएं, ये सिखाएं। तो फिर उनसे जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं उनका बड़ा मज़ा आता है। सिखाने का तो मज़ा आता ही आता है, आप खुद भी साथ साथ बहुत
0: अच्छा सिखाने का मज़ा उस टाइम पे भी ज़्यादा आ रहा होता है जिस टाइम पे सामने वाला उस तवज्जो से वो चीज़ सुन रहा होता है।
1: डेफिनेटली
0: ना, वो आपको रिस्पांस उस तरह का करता है।
1: डेफिनेटली, और इस वक्त बच्चे इतना जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं, जो उनकी असाइनमेंट्स हैं।
0: हम देखते हैं क्लासेस आपकी अलग-अलग कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं,
1: ग्रुप्स भी बने हुए हैं, कंबाइन भी चीजें चल रही हैं, कुछ मेन क्लासेस होती हैं, कुछ ग्रुप्स के अंदर होती हैं। मेरे पास जो सेशन आया हुआ है वो स्टोरी टेलिंग का आया हुआ है, और मेरे पास तकरीबन कोई
0: कहानी करानी है,
1: कहानी करानी है, किस्सा गोई, तो कहानी कराने में तो फिर हम माहिर है ना। और वैसे भी मुझे आपके प्रोग्राम में आने का बचपन से ही बहुत शौक था।
0: मैंने कहा आज आपको वो शौक पूरा कर लें, हमारे कॉलर हैं उनको भी बड़ा शौक है, बड़ी बार बार ब्लिंक कर रही है, मैंने कहा बात कर लें, शायद आपसे ही बात करनी है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: शहरी बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी शहरी, क्या कहिएगा?
2: इस मौसम में तो क्रिकेट हो और अच्छा
0: गुड़ वाले चावल हो साथ।
2: हाँ जी,
0: ठीक हो गया। गुड़ वाले चावल दही के साथ या वैसे?
2: नहीं वैसे।
0: अच्छा, सादे गुड़ वाले चावल, ओके हो गया। शेरी थैंक यू सो मच, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: बस मौसम के अलावा तो कुछ ही नहीं कह सकते, मौसम बहुत प्यारा है।
0: हमारे साथ आज ज़िया अंजुम साहब मौजूद हैं, कुछ उन्हें कहना चाहेंगे?
2: बड़े लोग हैं जी, गरीबों के कब सुनते हैं।
0: सुन ली आज, सुन ली, हमने बिठा लिया, हमने कहा सुनो आज।
1: शहरी भाई, हम गरीबों की तो सुनते हैं।
2: ऐसे लग रहे हैं जनाब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं।
2: क्या करें, वो गरीब इसलिए कहते हैं कि हमारी कॉल बहुत कम लगती है ना, इसलिए।
1: बस देखें, फिर भी मिल गई है आपकी कॉल।
2: देखो जी, आपसे वार्तालाप होनी थी इसलिए मिल गई। शुक्रिया सर,
0: बहुत अच्छा शुक्रिया शेरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी,
2: ओके, अल्लाह
0: हाफिज़। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि इस मौसम में जो है वो ये बहुत दिल करता, सो जाओ आराम से। इसके अलावा कुछ खाने पकाने की बात हो, पकाने की तो नहीं, चलो खाने की बात हो तो फिर क्या होता है आपका जहन?
1: इतना अच्छा प्रोग्राम आप कैसे कर लेती हैं?
0: बस मैंने अच्छे आरजेस को सुना हुआ है, अच्छे आरजेस को सुन सुन के मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ।
1: आप इशारा मेरी तरफ कर रही हैं,
0: आपकी तरफ इशारा कर रही
1: हूँ। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया।
0: तो मैं कहती हूँ कि अच्छे आरजेस को सुन के अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए, फिर तो वो गलत बात है ना, कि अगर अच्छे आरजेस को सुन के भी आपने वैसा प्रोग्राम करना है। तो क्या कहते हैं आपके इस मौसम में खाने के हवाले से, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है?
1: अच्छा, मुझे जो फ्रेंच फ्राइज है वो बहुत पसंद है।
0: हाय,
1: तो जो पकोड़े शकोड़े नहीं,
0: जो फ्रांस से आते हैं फ्रेंच फ्राइज, या जो यहाँ पे बनते हैं,
1: जो यहीं पे जिनको हम चिप्स बोलते हैं,
0: चिप्स वाले फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। अच्छा, आजकल तो उसमें भी बड़ी वैरायटीज आ गई है ना?
1: नहीं, सादे,
0: बिल्कुल सादे, वो ही मजे के होते हैं।
1: वो सादे जो है ना, उनको जरा सा गोल्डन ब्राउन करके ना, थोड़ा सा
0: थोड़े क्रंची करके,
1: थोड़ा क्रंची करके,
0: ठीक है,
1: तो उसके ऊपर नमक छिड़क के,
0: ठीक है,
1: फिर उसके बाद मैं हूँ और वो चिपस हो,
0: और साथ में केचप हो के चाय हो, कोई ना, ठीक हो गया।
1: अच्छा, मुझे ज्यादा मजा जो है ना वो विदाउट केचप आता है,
0: है ना?
1: हाँ, विदाउट केचप, ऐसे ही
0: क्रंची थोड़े से हो और वो विदाउट केचप,
1: और ऐसा मौसम हो उसमें चिप्स हो, और आप बालकनी में बैठे हो, बारिश हो रही हो, हवाएं चल रही हो।
0: वैसे तो आजकल आप साइकिलिंग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हैं इस मौसम में साइकिलिंग करने का भी
1: बड़ा
0: मजा आता है, एंजॉय करते हैं, बचपन की कुछ यादें ताजा हो जाती हैं,
1: बहुत मजा आता
0: है ना। बिल्कुल सही है, सज्जाद अली लाडला हमारे साथ है, कहते हैं बिल्कुल बड़े लोग हैं ये, वैसे इनको पैसे मिलते हैं तो कॉल अटेंड करते हैं। वो कहते हैं कि इनको पैसे मिलते
1: नहीं, मुझे
0: हैं,
1: कॉल अटेंड करने के पैसे नहीं मिलते मुझे ना,
0: उनको बात करने के, बोलने
1: के, बातें करने के पैसे मिलते हैं।
0: हाँ,
1: वो कहते हैं ना गल्लां दीयां खटियां
0: खाना, देखो इतने महंगे आर्टिस्ट नु आज सी इस तरह ही ले। 0421100101, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ, कहां से? इजाज़ साहब मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी कि आपको इस मौसम में क्या शौक है, क्या दिल करता है, क्या खाया जाए, कहाँ जाया जाए?
3: ये हमारा दिल तो यही करता है कि कद्दू वाले पकौड़े हों, बस कद्दू वाले हम घर में पहले भी खाते हैं, दूसरे पकौड़े हम नहीं खाते।
0: कद्दू वाले पकौड़े,
1: बैंगन वाले पकौड़े तो सुना था, ये कद्दू वाले कौन से होते हैं?
3: पीली काट करके तो उसमें बेसन डाल के और जो भी मिर्च मसाला डालना है फिर पकौड़े बनाओ, वो गर्म नहीं होते, वो नुकसान नहीं बेटा करते।
0: नहीं नहीं ये बहुत अच्छे होते हैं, सारी बात है, कद्दू तो खुद बहुत एक अच्छा वो है, वो कहते हैं कद्दूकश करके ना तो फिर उनको बनाया जाता है, ये भी अच्छा है ये आप भी ज्यादा साहब खा सकते हैं, डॉक्टर ने मना भी किया ना फिर भी खा सकते हैं,
1: ठीक है,
3: कोई नुकसान नहीं करते,
0: नुकसान नहीं करते। वाह शुक्रिया जी, वाह शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये इस तरह की कुछ इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा ना बहुत दिल कर रहा होता है और इंसान कहता है नहीं, अब इंसान मैं कहती हूँ ये ना करेंगे, इंसान जब खाना शुरू करे तब वो कहे कि मैं बीसों तीन तीन चार चार बर्गर एक टाइम पे खा लूँ, मैं
1: पूरा पूरा तो ऐसे ही आता है ना,
0: नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, फिर
1: कोई बीसों बर्गर हो, कोई मतलब खुराक और फिर बेतहाशा
0: और फिर बाद में बेतहाशा बन जाए वो, ये भी तो
1: बाद की तो फिर बाद में देखेंगे ना, वो तो जब कोई चीज सामने हो तो फिर उसके बाद कहाँ पे फिर होश रहता है।
0: अच्छा इसमें ये है, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो डाइट कॉन्शियस थोड़े से लोग होते हैं वो कहते हैं कि इतने डीप फ्राई ना किया जाए ना उसमें, तो उसमें आप उसको ये भी कर सकते हैं, आपको पता है ना ये खवातीन का प्रोग्राम है, इसमें हम थोड़ी सी खवातीन से रिलेटेड भी बातें करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ थोड़ी बहुत, ये अलग बात है यहाँ भाई लोग ज्यादा आते हैं फोन पे, लेकिन हम बात कोशिश होती है कि जहाँ थोड़ी बहुत खवातीन की बात की जाए, तो अगर बहुत ज्यादा है ना डीप फ्राई आप नहीं करना चाहते तो उसको आपने उस तरीके से बनाना है कि आप तवे पे उसको शेलो फ्राई कर लें लाइट सा।
1: नहीं मैं क्यों करूँ, मेरा क्या काम है,
0: कभी कभी चलो दिल कर ही पड़ता है,
1: मैं सिर्फ करवाता हूं। आप कहेंगे वो आप करवा लें।
0: हाँ वो करवा लें। हाँ। और वो करवा के आप लाइट सी नमक, जो नमक मिर्च है वो डालें,
1: नहीं काली मिर्च
0: डलवा डलवा लें। आप कोशिश करें कि ग्रीन चिली का यूज करवाएं। करवाएं
1: हाँ, ये अब ठीक बोला आपने। हाँ,
0: ग्रीन चिली का यूज करवाएं, रेड जो फ्लेक्स हैं उनका यूज ना करवाएं।
1: हाँ,
0: हाँ, अब सही जा रही हूँ,
1: अब सही जा रही
0: हूँ। तो एक कॉलर लें या गाना लगा लें?
1: कॉलर ले
0: जी। अस्सलाम वालेकुम। हमदुल्ला मलाखिल हमारे साथ,
4: बिल्कुल आप लोगों की शाम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमदुल्ला क्या कहेंगे,
4: बिल्कुल आपने बोला कि वो क्या चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोगों को जो है मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है।
0: चाय बहुत ज्यादा पसंद है, तो कोयटा में हो लाहौर में हो?
4: कोयटा में हूँ मैं।
0: कैसा मौसम है कोयटा का?
4: गर्मी बहुत ज्यादा है कोयटा
0: में, फिर तो हम लोग अच्छे हैं,
4: यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है।
0: चले बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ मौजूद हैं आज अंजुम साहब, और वैसे तो ये नहीं नजर आते लेकिन आज हम क्या कहेंगे, हमारी गुड लक है।
1: देखें मैं जुबिया आपको बात बताऊं,
0: हाँ।
1: जिनको मैं नजर आता हूँ ना,
0: हाँ।
1: फिर उनको मैं ही नजर आता हूँ। आप कह रही हैं कि ये नजर नहीं आते, आप पूछे उन लोगों से कि हाँ। जिनको मैं नजर आता हूँ तो फिर मैं उनको कितना नजर आता हूँ, कैसे कह रही हैं आप? आपने ये देखे दिल तोड़ दिया आपने।
0: नहीं आज तो नजर आप ही तो नजर आते हैं, बिल्कुल रात के टाइम पे आप ही तो छाए हुए हैं, अक्सर हम जब भी सुनते हैं आप ही होते हैं तकरीबन,
1: ठीक है,
0: या किसी के साथ होते हैं या कहीं लाइव पे होते हैं या फिर अपने प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन होते हैं आप ही।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए
0: जी यहाँ पे हम एक सॉन्ग शामिल कर रहे हैं, 0422100101 हमारा डायलिंग नंबर है, आपने मुझे ये बताना है कि इस मौसम में आपका क्या दिल करता है, कहीं जाने का दिल करता है, क्या इंजॉय करने का दिल करता है, क्या मुश्किल है, और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि आपके घर में आपका फेवरेट पकवान कौन सा है। 0422100101 डायलिंग नंबर है। सॉन्ग सुने फिर वापस आते हैं।

0: जी वेलकम बैक, दिस इज़ एफ एम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक। और आपका अपना प्रोग्राम है जी लेडीज़ लाउंज, और लेडीज़ लाउंज में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मौसम चेंज हो गया, मूनसून का सिलसिला जारी है और बरसात का मौसम जारी है, और बरसात के मौसम में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको करनी है। NDMS ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है, 19-23 जुलाई तक जो है वो बारिशों का शदीद सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से सैलाब आने के कुछ खदशात हैं। इसमें मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में शदीद तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, इसलिए जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पहाड़ी इलाकों में आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने से थोड़ा सा गुरेज करें। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो कोशिश करें कि वो कहीं अपने किसी और रिश्तेदार की तरफ चले जाएं या कहीं साइड पे चले जाएं। इसके साथ साथ आप बिजली की तारों से, खंभों से थोड़ा दूर रहें, नदी नालों और पूल्स की तरफ जो है वो जाने से थोड़ा सा गुरेज करें। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द साफ सुथराई का भी ख्याल रखना है। बड़े शहर जितने भी हैं, उस जिसमें लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पिशावर हो गया, इसमें फ्लडिंग के खदशे हैं, इसलिए आपने अलर्ट रहना है। और आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पाक NDMA ऐप का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। आप इसको डाउनलोड करें और आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रखें, बिकॉज़ जब बरसात आती है तो इस तरह के सारे प्रिकॉशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए इन हिदायात पर अमल ज़रूर करें आप। जीरो फोर टू ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो वन ओ वन डायलिंग नंबर है, इस पे कॉल आया है, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो
0: जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: मोहसिन साहब, दुबई से। मैं भी लास्ट मंडे को भी कॉल की।
0: मोहसिन कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, सारी बातें भूल गई हैं।
0: ओए होए, मुझे ये बताओ कि दुबई में मौसम कैसा है?
1: कसम से बहुत गर्मी है, लेकिन मैं एक क्या खुश हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ठंड है।
0: इस बात से खुश है, बहुत अच्छे। तो मोहसिन, बरसात के मौसम में
1: खुश क्यों?
0: हाँ,
1: क्योंकि अभी वाइफ ने एसी बंद करके मजे की थोड़ी होगी, तो बिल हमको देना पड़ेगा।
0: ओके हो गया। मोहसिन, मुझे ये बताओ कि इस मौसम में क्या चीज दिल करता है कि ये चीज होनी चाहिए?
1: दिल करता घर आऊं, पाकिस्तान आऊं, एंजॉय करूं।
0: हाय, ये
1: इधर कभी नहीं देखी मैंने।
0: हाँ, सही हो गया, सही हो गया। चले,
1: 10 ईयर हो चुके हैं, 10 ईयर में 2-3 दफा देखी होगी बाकी
0: चीजें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हमें तो बातें नहीं आती, पता नहीं पाकिस्तान वाले कैसे बातें कर लेते हैं।
0: आप तो, मैं कहती हूँ यूरोप से गए हैं ना, वहाँ पे है ना?
1: मैं दुबई की बात कर रहा हूँ जी।
0: मैं कह रही हूँ आप तो यूरोप से जो है वो दुबई में मुंतकिल हुए हैं ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू मोहसिन, थैंक यू। कहते हैं जी, पता नहीं पाकिस्तान वाले कैसे बातें कर लेते हैं। सही हो गया लड़के, सही हो गया, बनता है तुम्हारा ये बातें करना। अच्छा जी, आज मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि

0: गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद, फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्ट्स में।
1: अच्छा जी, इस मौसम में आप जो भी करें, जैसे भी करें, जो दिल चाहता है वो करें, लेकिन इसमें ये ख्याल रखें कि आप जात जो है वो किसी के लिए तंगी का बायस ना बने। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने खामोशी से सुना। जाते जाते एक लास्ट कॉलर लेती जाऊंगी, 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम।
1: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: पैतरीस बात कर रहा हूँ।
1: क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? पहुँच गया जी आप तक, उन तक आपका सलाम।
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम, जब से वो आया तब से ट्राई कर रहा था, बहुत मजे से प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तब से मैं कॉल कर रहा था, फिर वो इस प्रोग्राम को देखा बजारी।
1: हाँ।
2: तो क्या कहते हैं वो कॉफी हो, और बता टेरेस पे बैठा।
1: वेरी गुड हो गया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
2: कुछ भी खाने को मिल जाए,
1: बस मिल जाए। ओके हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू। टाइम खत्म हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम शो। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।
0: पीछे हट मेरी बात मान, गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद, फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्ट्स में, अकेला काफी।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: चीन की कंपनी शेनडोंग हाई स्पीड ग्रुप ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट शोबे के मंसूबों में सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान ने हैटी को दरपेश मुख्तलिफ नौयत के मसाइल के हल के लिए हैटी की क्यादत में जाम हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना मौसमी खतरात के हवाले से इंतबाह जारी किया है।
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है, अब तक की खबरों के साथ फरीहा हसन। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तरक्याती इकदामात कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन की तआवुन पर मबनी सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग देने पर ज़ोर दिया है। भारत में आज मुसलसल दूसरे रोज़ इम्तिहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ दिल्ली में हज़ारों नौजवानों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 खवातीन टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा T20 कल कराची में खेला जाएगा।
2: हाय, दिस इज FM 101. मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सबात पार्टिन और रैक स्टार आपको वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो

बदक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, बदक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, बदक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, बदक सा और चुप।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा। बालमा के लिए कितनी मुश्किलात हैं भाई, उससे भी तो पूछ लो ना कि उसके लिए छुट्टी लेना आसान है। कामों से छुट्टी लेना कोई मतलब खाला जी का घर है क्यों आप साहब, मतलब अब कह देना तो आसान है, गानों में सुन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन भाई जिन्होंने छुट्टी लेनी होती है ना काम से, उनसे पूछें कितना मुश्किल टास्क है। एनीवेज जनाब, अमान साहब भी हमारे साथ हैं। अमान थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं हमेशा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमें कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम सो ऑनर्ड, सच अ डेडिकेटेड टीम हमारे साथ है, इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं इस वक्त हमारे साथ, सो थैंक यू सो मच। वो एक है ना, एक और भी चीज़ है, वो तेरी दो टक्किया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। तो जनाब हमारे गेस्ट जो है ना, वो जल्द बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे, और आप सब जानते हैं मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जी हमारे जो गेस्ट हैं आपके बड़े पसंदीदा गेस्ट हैं, मतलब आपके पसंदीदा शख्सियत हैं, इस हवाले से कि आप लोग इनको सुनते हैं और इनको बहुत शौक़ से सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, और बल्कि आप बार बार कहते हैं भाई पूरा हफ्ता ही इनको सुनते रहें, ये प्रोग्राम करें, ये आते रहें हमारे पास, विच इज़ नॉट पॉसिबल मेरे ख्याल में, लेकिन यह है कि आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये आपके पास रहें। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की ख्वाहिश को हम इस अंदाज़ में पूरा करते हैं कि हम इनको एज ए गेस्ट बुलाते हैं, एज ए मेहमान बुलाते हैं, और इनसे सवालात करते हैं, इनसे गपशप करते हैं, हमारे मेहमान हमारे सेगमेंट में इनसे बातचीत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ आपके इस वक्त जो जहनों में चल रही होगी, आप लोगों के जहन में होगी यार आज कौन सा मेहमान है, कौन आ रहा है, जो मतलब ये बस एक मंजरकशी करी जा रहे हैं, कहानी हमें सुनाई जा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, वो कहते ना रुको ज़रा सब्र तो करो तो थोड़ा सा रुक जाए ना, मैं भी बता दूँगा आपको कौन है हमारे आज के मेहमान। बहरहाल जनाब आप भी हमारे मेहमान बन सकते हैं और हमें सुनाए जा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, वो कहते ना रुको ज़रा सब्र तो करो तो थोड़ा सा रुक जाए ना, मैं भी बता दूँगा आपको।

0: था. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कि जब डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं था. एट दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर क्या क्यूरियोसिटी होती थी. एक ब्रॉडकास्टर के लिए भी बड़ा मज़ा होता था कि you know, आपका सामे जो है जिससे आप मुखातिब हैं उसको कुछ नहीं पता होता था. उसको ये पता है कि ये जो एक प्रेजेंटर है, ये जो एक प्रोग्राम कर रहा है, इसको मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ. एंड इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता था कि वो जो ब्रॉडकास्टर है वो कौन है, कैसा है, किस तरह का है, मतलब वट एवर. तो वो एक जैसे कहते हैं ना तशनगी होती थी अंदर, एक क्यूरियोसिटी होती थी. तो उसको जानना, उसको समझना, उसको देखना एक बड़ी ख्वाहिश होती थी. तो वो क्यूरियोसिटी अब सोशल मीडिया ने आई एम श्योर दूर कर दी है. और प्राइवेसी जो है ना, हमारी प्राइवेसी जो है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों ने खुद भी अपनी प्राइवेसी को ना डिस्क्लोज कर दी है. अभी भी बहुत सी दुनिया है जो बड़ा प्राइवेट रहती है, बड़ा अपने अंदर रहते हैं, अपनी एक लाइफ को अपने तक महदूद रखते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, हर चीज़ को लुत्फ उठाते हैं. बट ये है कि वो दे आर नॉट इन डिजिटल मीडिया, दे आर नॉट वेरी, हर बंदे का अपना एक स्टाइल है. वो बहुत ज़्यादा डिजिटली अपनी चीज़ों को पब्लिश नहीं करते, अपने आप को पब्लिश नहीं करते, बट दे इंजॉय देयर लाइफ अलॉट. वो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करते हैं, फील करते हैं, मौसमों को महसूस करते हैं, अच्छे लवाजमात को इंजॉय करते हैं, सैर व सियाहत को पसंद करते हैं. और आई थिंक ये हर बंदे के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को इंजॉय करें, हर चीज़ को फील करें. दैट इज़ लाइफ. आई थिंक आपको बड़ा मज़ा आएगा उस ज़िंदगी में जब आप चीज़ों को फील करके ना इंजॉय करके, आप कुछ खा रहे हैं तो उसको महसूस कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल साइड पर पड़ा हुआ, फिर आप प्रॉपर हर बाइट का मज़ा ले रहे हैं. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवलिंग को इंजॉय कर रहे हैं, उस इलाके को इंजॉय कर रहे हैं, उस मंज़र को इंजॉय कर रहे हैं, उस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, उन पहाड़ों को, उन नदियों को, उन झरनों को, उन दरख्तों को, हर चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं. हमारा थोड़ा सा अलमिया ये है, आप देखेंगे कि हम ट्रैवल पे होते हैं ना तो हमारा ज़्यादा काम होता है कि हम अपने मोबाइल से मंज़र को जो है ना वो मंज़र कशी करना शुरू हो जाते हैं, यानी उसको पिक्चराइज करने लग पड़ते हैं, उसको अपने मोबाइल के अंदर समेटने की कोशिश करते हैं. बट आई डोंट नो, मेरी पर्सनल फीलिंग ये उसमें हम बहुत सा जो नेचर है ना उससे हम दूर चले जाते हैं. फिर वो अननेचुरल सी एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि यार उसको फील करें, उस मौसम को, उस इलाके को, उस जगह को, जिस जगह आप जाते हैं. आजकल तो वैसे ही टूर्स काफ़ी जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो सियाहती मकामात हैं उस पर लोग ट्रैवल करें. लेकिन बट अगेन मैं थोड़ा सा एक पब्लिक मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज जैसे कहूँगा, क्या कोशिश करेंगे अब चूँकि बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और ट्रैवल करने से पहले ये ज़रूर देख लें जिस इलाके में आप जा रहे हैं उधर का मौसम कैसा है. ख़ासतौर पे आपके जो सियाहती मकामात हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है बारिश की वजह से, तो वो थोड़ा सा स्केरी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि आप जब उन इलाकों में जाएँ तो बारिशों के मौसम को थोड़ा सा अवॉइड करके आप अच्छे मौसम में जाएँ और जहाँ पर बारिशें ना हों. तो ये थोड़ा सा एक एहतियात ज़रूरी है चूँकि लैंडस्लाइडिंग और फिर पानी, फिर अब इस तरह के वाकयात में कल रिपोर्ट भी हो रहे हैं, वो भी देख रहा था कि जो पानी का भाव है. थोड़े दिन पहले मैं भी एक एडमराला की तरफ मैं गया हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया. हमारे हमसाया ममालिक छोड़ देता पानी हमें और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता. सो प्लीज़ बी केयरफुल, एहतियात कीजिए और एहतियात जो है ना बहुत ज़रूरी है. सो जनाब, सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं उनको तो पता चल गया हमारे आज के मेहमान कौन है, लेकिन हम आपको भी बताते चलें कि जनाब आज ये डॉक्स हमें ज्वाइन करेंगे कुछ लम्हों में. आज हमारे वो गेस्ट होंगे, उनसे हम बड़ी अंदर की बातें करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा. पर सो जनाब, अभी एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे, उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे. हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101. मुझे कहते हैं फरहान खान. एंड इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय कीजिए और
1: मैं जल रहा हूं तेरी दूरियों में दूर कहीं, तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी. आज आई है फिर से याद तेरी, आज लगता है फिर बारिश होगी. प्लीज कम बैक, आई मिस यू.

0: वेलकम बैक। अच्छा अच्छा, ये जो ब्रॉडकास्टिंग की खूबसूरती है कि जो ऑफर जो कह के होते हैं ना, हमारे सुनने वालों को नहीं पता चलता कि आखिर इसकी वजह क्या है।
1: हाँ, अगर रहमान हो ना यहाँ पे फिर पता चल जाए।
0: ओए होए होए, उसका कह के की आवाज़ वो लक्ष्मी चौक तक जाती है।
1: नहीं, सही कह रहे हैं,
0: बड़ा वो कमाल का हस्त
1: है ना।
0: लेकिन अच्छी बात है जी।
1: यार मुझे फोन से याद आया, तुसी संजीदा संजीदा गल्लां च लगे। आई रिमेंबर के उस वक्त खैर मोबाइल तो आ गए थे, मेरे अब्बा के पास था, वो यूज़ करते थे। ये लैंडलाइन से ना फ़ोन करना ना, एक नंबर पे, एक सर्टन नंबर, एवं लैंडलाइन पे इधर उधर फ़ोन घुमाते रहना, एक सर्टन नंबर था, रेंडमली फिक्स किया मैंने, मेरी बहनों ने मिलकर ना वो ढूंढ लिया एक नंबर। अब उस पर कोई खातून उठाती थी फ़ोन।
0: अच्छा,
1: मैंने फ़ोन करना और मैंने ना आवाज़ बदल के मैं कहना, आज रात आपकी फ्रिज पर डाका पड़ेगा। फ़ोन बंद। एक दफा, दो
0: दफा, भी नहीं होती थी,
1: तीन दफा, नहीं नहीं होती थी ना जी।
0: अच्छा,
1: हाँ दो तीन दफा ये किया ना मैंने, तो वो कहीं घबरा गई। उन्होंने शाम को कॉल बैक की, जब उनके भी मियाँ साहब आए होंगे घर और मेरे अब्बा इत्तफाकन आ गए थे वापस, वो कॉल बैक आई, फोन मेरे अब्बा ने उठा लिया।
0: अच्छा।
1: वो खातून कहने लगी ये इस नंबर से मुझे फोन आ रहा है, आपके घर में आज डाका पड़ेगा आपके फ्रिज पे। आदत इतनी, इतना पक्का हो गया था, मुझे पता था अच्छा ठीक है इत्थे जाके बंदा
0: शुरू हो गया काम।
1: मैं भी उत्थे बांधा सी क्योंकि पास ही दादी अम्मी का कमरा था, मैं पता था अबू शुरू होंगे ना तो दादी बाहर आएंगी और मुझे बचा के रेस्क्यू करके ले जाएंगी, तो वो फिर वहाँ जाके बन जाना, मैंने फिर अब्बा जी ने शुरू हो जाना।
0: अच्छा, ये हमारे दौर की ये खूबसूरतियाँ थी।
1: हाँ।
0: असी कुट भी खा लेंदे सन, मुर्गा भी बन जाते सन, लेकिन अब नहीं बच्चे बनते। अब तो वैसे कहते हैं मार नहीं प्यार।
1: नहीं, किसी हद तक ये ठीक है। देखें, अल्लाह के रसूल ने 1400 बरस पहले एक चीज़ कही, कुछ चीज़ों में सख्ती है, सख्ती थी और सख्ती रहेगी। उसके अलावा हमेशा बात यह की कि बच्चों के साथ नरमी का रवैया रखो और नरमी से पेश आओ, और जहां पर अगर जरूरी हो तो उनके चेहरे पे, उनके सर पे यहां मत मारो।
0: अच्छा,
1: ये तो मैं समझता हूं ये वो चीजें हैं जो शायद हमने निकाल दी अपनी प्रैक्टिस से, और इसमें इलाकाई जो है ना रसूमात का बड़ा असर होता है, और हमारे इलाके की रसूमात कुछ मुख्तलिफ हैं। अगर आप यहाँ से निकलें, आप ईरान वाली साइड पर जाएँ, वहाँ पर दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। अगर आप जाएंगे इधर नाइजीरिया और इस साइड पर जाना शुरू करेंगे नीचे, तो वहाँ पर मुख्तलिफ हैं। यूरोप में और है, अमेरिका में और है। वो आपने तो मार खाई, उधर तो जो हमारे अम्मी अब्बा के एज फेलो थे उन्होंने भी नहीं खाई। So,
0: नहीं, वैसे पहले दौर में मार पड़ती थी, बैक इन 90s 80s में,
1: वो तो हुण भी पै जांदी है जिन्हें पैनी होए।
0: लेकिन जिस तरह उदो तो खैर बेशुमार मार पैंदी सी ना, लेकिन सर एक और चीज थी
1: सर, उसमें कुछ चीजें गलत भी है ना, बिला वजह की मार भी पड़ती थी ना,
0: वो एक ने गलती की पूरी क्लास को मार पड़ गई।
1: हाँ नहीं, ये ठीक है ना, ये आजकल इस चीज पे बैन होना चाहिए।
0: ये तो गलत है,
1: ये गलत है ना। आप उस्ताद हैं, पढ़ाएं अच्छे तरीके से, गलती है जितना आपको इख्तियार है उतना उसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि सुबह आना जी, मैनू पता होना आज मैडम रुखसाना ने चेक करने हैं, नेल्स दिखाओ, मैं नेल्स दिखा रहा हूँ, जराबें दिखाओ, ऐसे बूट आगे करने ने तो इंच करके दिखाना है, वो जराबों का रंग सफ़ेद क्यों नहीं है, ठा मुंह पे थप्पड़। मैं सोचना यार ये कितों आई है, ये जानी क्यों होनी यार, हूँ मैं चिट्ठी जराबा कितों करके लिया जिस तरह की ये चाह रही है। ठीक है ना, बंदे बॉयज तो फिर ऐसे ही होते हैं, गंदे कर रहे हैं, अब जब गंदी कर दी है माँ बेचारी क्या ही कर लेगी।
0: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस कुट के कल्चर ने ना, मुझे याद है कि बड़े लोगों के फ्यूचर तबाह किए
1: है ना, स्कूल से भाग गए।
0: उन्होंने पढ़ाइयाँ नहीं की, उन्हें डर खौफ रहता था, घर वाले कहते तो स्कूल क्यों नहीं जाता, वो कहते टीचर कुट दो, उन्हें कहने कुटन दो, वो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, अच्छा कुट तूने शरारत की होगी, तूने पढ़ा नहीं, इस चक्कर में सर बड़े लोगों के
1: सर वो लाइन ही गलत थी, वो जुमला बहुत गलत था कि हड्डियां साडियां मास ताडा, दैट वाज अ लाइन आई रिमेम्बर के जो सुनने में आती थी। शुक्र है मेरे अब्बा ने कभी ऐसे नहीं कहा, और मेहरबानी मेरी अम्मा की हमेशा खवातीन के पास पढ़ने भेजा मुझे।
0: तो उनसे कुटनी पड़ी कभी
1: नहीं, वो फिर आपको पता डंडे का इस्तेमाल सिंफ नाजुक कम करती
0: है, वो एहतियात से करती
1: है। हाँ, सिंफ नाजुक एहतियात से करती है, थप्पड़ छप्पड़ पे गुजारा कर लेती हैं,
0: पूरी फोर्स से लाके आगे आगे स्लो कर देंगी।
1: हाँ, वो दो तीन जगह एक्सपीरियंस हुआ। एक जगह तो मुझे होता था यार यहाँ से निकल जाऊं, एक जगह दिल करता था मार खाऊं।
0: अच्छा, ये
1: दिल करता था ये मारती क्यों नहीं है, मुझे मारे हैं, मुझे मारे आप।
0: अच्छा, ये जो छोटी उम्र का क्रश होता है
1: नहीं, दैट वाजंट क्रश लाइक, बस ऐसे ही था कि यार
0: शी वाज प्रीटी,
1: नहीं शी वाज प्रीटी, शी वाज प्रीटी, और वो मजाक करती थी, छेड़ती थी, फिर होंदा सी अच्छा ये मारेगी ना तो ठीक है मजा आएगा, ज्यादा मार लेगी तो बाद में कुछ खाने के लिए देगी। फिर होता है हमारे ना यार मारती क्यों नहीं। सो ये बात जहां से शुरू हुई वो गलत था कि हड्डियां हमारी मांस आपका, ये गलत है, इख्तियार नहीं है किसी को, आपका मजहब नहीं देता जो, तो जिस मजहब का आप प्रचार करते हैं तो उसके खिलाफ। अब ये रवायतों में बात है कि साढ़े जमाने चेंज होंदा सी आज दी नसल, भाई आप उसको छोड़ें, सही और गलत का तायुन करें, क्या वो ठीक ट्रैक पे हैं, इफ दे आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने जिन चीजों उससे टॉर्चर खुद बेयर किया, आप चाहते हैं वो भी वही करें, तो आप में और वो सास बहू के टिपिकल कल्चर में कोई फर्क तो नहीं है। फिर तो हम सारों के अंदर की एक औरत जाग जाती है, मैं कुट खादी इनू क्यों नहीं पहनी, मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं, मेरा दोस्त था बट आई रिमेम्बर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन स्टिल, दो मुलाकात कम होती है, हमें नहर पे नहाने का बड़ा शौक था ना, हम जाया करते थे अक्सर दोपहर को निकल जाना हमने नहर पे नहाने के लिए, और फिक्स किस्म के इशारे रखे हुए थे, हाथ से इशारा करना चलिए ना चलिए, हमने चले जाना, उसने आना बैलकोनी पे अपनी और वहाँ से फिर उसे बुला लेना। मेरे अब्बा को एक दफ़ा पता चला, दो दफ़ा पता चला, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, और यार दोपहर को ना जाया करो, गर्मी होती है, ऐसे ना किया करो, वैसे ना किया करो, रोज़ ना जाया करो। ओके फाइन, उन्हें पता था बच्चा है, ग्रो कर रहा है, इसने ये चीजें करनी है, इट्स ए गुड लर्निंग फेज। ओदी अम्मा ने की करना, एक दिन बट को ले गए, वापस आया, बट ने टोपी पहनी है, बैलकोनी पे खड़ा है, मैं कहा बट नीचे आ, उन्हें नहीं मैंने नहीं आना, बट आ तो सही, उन्हें अम्मा ने मारना है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, टोपी क्यों पहनी है, उन्हें टोपी इंच करके लाई, ओदी अम्मा ने वाल ओदे सारे बेचारे कट थे, जुल्फें शदीद किस्म की जुल्फें थी उसकी, उसने उसकी अम्मा ने काट दिए, और जुल्म किया, वो बेचारा रोना शुरू हो गया। और इस तरह की ज्यादतियाँ नहीं करनी चाहिए ना, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये फर्ज नहीं है कि जो आपके साथ हुआ वो आप सबके साथ करें।
0: वो कहते हैं ना कि देखो शेर की आंख से खिलौत सोने का नवाला,
1: गलत को गलत कहें, सिंपल सी बात है, वो कोई भी जनरेशन है, जेन जी है या अल्फा है, इसके बाद आने वाली, आज हम तारीख का मुताला करते हैं, इतनी आपको किताबें मिलेंगी, आपको तो खाने में जाएं, किसी लाइब्रेरी में जाएं, वे आर यू गो यू फाइंड सो मैनी बुक्स, क्रिटिसाइज करते हैं फलाने ये किया, दैट वाज अ रॉन्ग थिंग, और ये रॉन्ग किस्म की प्रैक्टिस थी, लेकिन जो अपने ध्यान दिए तो बंदा कहता नहीं, व्हाट इज दिस, हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए।
0: अच्छा सर, 90s और 80s के जो बच्चे हैं, कंपैरेटिवली आपके बच्चों को अगर आप कंपैरिजन देखें, आप किधर देखते हैं कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और उनका फोकस, इसमें क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको?
1: अच्छा, बच्चों के हवाले से थिंग्स आर डिफरेंट,
0: बच्चे इन अ सेंस के जो टीनेजर्स भी हैं,
1: नहीं कॉन्फिडेंट हैं, दे आउटस्पोकन, दे स्पीक वेल, हमारे उसमें 90s के अगर आप उधर चले जाएंगे तो फ़र्क आएगा आपको थोड़ा सा, इतने आउटस्पोकन नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, यहाँ पे आपको जनजी के भी अगर नज़र आते हैं ना आज के, या अल्फा के देखें, अपेरेंटली अगर वो नहीं बोल रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसे बोलना नहीं आता, अगर आप उसे कहीं पे फंसाने की कोशिश करेंगे वो आगे से पूरा रिएक्शन देगा आपको। उसके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है कि किस सिचुएशन में मुझे किस तरह से एक्ट एंड रिएक्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों तरह से वो तो अलग है, लेकिन उन्हें आता है। हमारे दौर में चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क था, हम और तरह से देखते थे। मास्टर ने गलत भी कहा तो अच्छा यार ठीक है, उन्हें कहता है भाई आज तुम्हारी छुट्टी बंद है सारा, तुमने यहाँ पे साफ करके जानी है क्लास, अच्छा जी ठीक है। आज का बच्चा कहे ना क्यों मैं क्यों साफ करूँ, आपने सफाई वाला किस लिए रखा,
0: हम पैसे किस बात के,
1: हाँ तो ठीक है, ठीक गलत है, बात नहीं है,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। कहीं बदतमीजी का एलिमेंट आने लगता है, बदतमीजी किसी दौर में भी अफोर्डेबल नहीं थी और ना रहेगी,
0: ना रहेगी।
1: बोलना, लर्न करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग।
0: अच्छा, लेकिन लेकिन विजडम और जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन और आपकी जो जो आपकी ज़िंदगी के जो मुशाहदे हैं वो तो वक्त के साथ साथ आते हैं
1: सर, बिल्कुल।
0: लेकिन अगर तो ये बहस करते हैं बच्चे, अगर ये बच्चे कम्युनिकेट करते हैं और ये समझते हैं कि सम वेयर सम हो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर वेरी इंफॉर्मेटिव, हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो इधर उनकी उनको समझाने की, उनको बताने की, उनकी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है
1: सर? है, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है आजकल लोगों के पास, और उसकी वजह से कहीं लगता है शायद अकल कुल का गुमान होने लगता है। और मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, मुझे इसका भी तारुफ है, इसका भी तारुफ है। हमारे दौर में उस तरह से इंफॉर्मेशन की भरमार नहीं थी,
0: ठीक,
1: इंफॉर्मेशन का फुकदान था, अभी इंफॉर्मेशन की भरमार है,
0: ठीक है।
1: लेकिन जिसे आप विजडम कहते हैं, जिसको शऊर कहना कहा जाता है, वो उम्र के साथ आता है।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: और कोई भी अगर क्लेम करता है, वो किसी भी जनरेशन से है, नस्ल से है, वो नहीं, क्लेम गलत है उसका कि मैं जी बड़ा अकलमंद हो गया हूँ, बड़ा शऊर है मुझे, नहीं। शऊर अकल के साथ, ग्रोथ के साथ आएगा,
0: वक्त के साथ।
1: आपके मुशाहदात बढ़ते हैं, आपके तजर्बात बढ़ते हैं, आप सीखते हैं, गुजरते हैं, फेलियर्स होते हैं, कामयाबियां मिलती हैं, तकलीफ, दुख, दर्द, आंसू और खुशी के एहसासात, ये जब सारे के सारे इकट्ठे होते हैं तब आपकी अकल की बढ़ोतरी का अमल शुरू होता,
0: ठीक,
1: और उसके साथ ही आपका शऊर बुलंद होता। तो इट कम्स विद द टाइम। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिन्हें अच्छा। आ जाता है, वो खुदा की तरफ से अता करता, खुदा देता है, होती हैं एक्सेप्शन।
0: हालात भी कुछ इस तरह के बना,
1: हालात तो मुशाहदात आपके बढ़ाते हैं ना, वो मुशाहदात बढ़ाने से सर्टन सिचुएशंस में आपका शऊर बुलंद होता है। ओवरऑल यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम।
0: अदब कितना ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, अदब के दायरे में रहना, अदब, अदब से मुराद ओवरऑल अदब जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों के अंदर इसका शऊर कैसा उजागर किया जा सकता है?
1: गाने शाने नहीं लाते शोच?
0: नहीं।
1: अच्छा,
0: गाने लाए थे फिर
1: नीट एंड क्लीन?
0: हाँ हाँ,
1: बिल्कुल।
0: नहीं नहीं, लगन के गाने भी लगन गए।
1: अच्छा,
0: अगर कहोगे तो वैसे
1: हाँ,
0: सवाल है ना, अल्ले तो अभी शुरू है ना, तो
1: अभी लाना चाहिए, तुझे तो नॉन स्टॉप ही जा रहे।
0: अच्छा, मुझे समझ आ गई,
1: नॉन स्टॉप जा रहे हैं,
0: मुझे समझ आ गई
1: है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात करते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना लाइटर नोट पे भी रहना चाहिए, काफी संजीदा सा।
0: नहीं, हम कंटेंट भी बना रहे हैं साथ।
1: नहीं, बनेगा जी, बनेगा, उसमें भी इस तरह की बात आनी चाहिए। सारे जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह का करें। हाँ। के आर एन जी होता है, अगले कहने नहीं एन जी भी होता है।
0: नहीं,
1: जबरदस्त, समथिंग डिफरेंट। अदब की अगर बात करें, फर्स्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम कशफुल माजूब।
0: अच्छा,
1: कशफुल माजूब पढ़ते हुए अदब के ऊपर मैंने जब गुफ्तगु पढ़ना शुरू की, वहां पर लिखा कि अदब में ही कुल की कुल चीज तसव्वुफ की शक्ल में पाई जाती है, दीन की शक्ल में पाई जाती है। और दीन क्या कहता है? दीन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ। ज़ाबता हयात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ज़ाबता हयात क्या है? कि सुबह से शाम तक के जितने भी अमल हैं वो किस तरह से होने चाहिए, मजहब आपको बताता है। और फिर शुरू से बचपन से आखिरी वक्त तक के भी तमाम के तमाम अहकामात, और किस तरह से लाइफ आपने स्पेंड करनी है, ये भी आपको दीन बताता है। और अदब के जो तकाजे हैं वो दीन कहता है जब तक पूरे नहीं तुम करते तब तक दीन भी नहीं आता। ईमान कामिल नहीं होता। और सूफी तो कहता है कि आप सलूक की राह पे चल नहीं सकते। तो अदब तो बहुत पहला करीना है और बहुत ही अहम चीज है। बगैर अदब आपको कोई शय नहीं मिलती। अदब वाजिब है आप पर कि आप निगाह को नीचे रखें, दिल से तस्लीम करें। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ख्याल में भी नफी नहीं करनी। इट वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें उस वक्त कभी समझ नहीं आई कि ये क्या है। कहते थे कभी ख्याल में भी नफी नहीं करनी उसकी। ब्रॉडर वे में बात की। बाय द टाइम वी लर्न, आप यू टॉक अबाउट सूफीज्म, यू टॉक अबाउट तसव्वुफ, राह सलूक की बात करें, आप इश्क और मोहब्बत या प्यार की बात करें, आप काम कारोबार की बात करें, जॉब की बात करें, किसी ताल्लुक रिश्ते दोस्ती माँ बाप बहन भाई, एनी थिंग यू नेम अ थिंग, आप जहां सेकेंड थॉट लाते हैं। आजकल हम साइकोलॉजी में इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट इस पर बहुत ज्यादा बात करते हैं कि देयर इज वेरी बिग रीजन ऑफ योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और इसमें क्या है, सेकंड थॉट ऑलवेज हिटिंग योर माइंड, अगर ये अगर ऐसे, और उस पर फिर ओवर थिंक करते करते हम आगे निकल जाते हैं, फिर सिचुएशन क्रिएट करके खुद को परेशान करते हैं। और वो कहते थे कुछ नफी ख्याल में नहीं करने, यानी जो तय कर लिया, जिस पर वो कहते थे आड़ा है तिरछा है या है चकोर, आड़ा है तिरछा है या है चकोर, जहां तूने आसन जमाया हिल ना डोल, मतलब जस्ट होल्ड ऑन टू इट स्ट्रांगली। पर जब एक दफा तय कर लिया वहां पे खड़े हो, आपका इश्क मोहब्बत का रिश्ता, आपका मां बाप से ताल्लुक है, आपकी दोस्ती है, काम कारोबार है, नौकरी है, या राह सलूक में जाना, तसव्वुफ में, जहां आप चल पड़े ना, सेकेंड थॉट को कभी भी आपने वेटेज नहीं देनी। जिसे कहते हैं बर्न द बोट्स, और फिर आगे की तरफ बढ़ना है। और हर चीज का एक सर्टन टाइम होता है, एक खास वक्त गुजर जाने के बाद वो पे ऑफ करती है। अगर आप उसका इंतजार नहीं करेंगे तो चीजें पे ऑफ नहीं करती। हमें जिस तरह से आजकल अटेंशन स्पैन जो है ना वो रिड्यूस हो गया सारों का ही, कुली तौर पर पूरी दुनिया में, उसकी वजह से चीजें पे ऑफ नहीं करती। कंसिस्टेंसी का एक लफ्ज है, वो भी यहीं पे है,
0: इस्तकामत
1: यहाँ पे है कि खड़े रहना ख्याल पे, इस ख्याल से नहीं हटना। वो फिर टाइम लेता है लेकिन बनाता है। हमें एक वाक्या सुनाया करते थे समझाने के लिए इसी चीज को, कि ना एक बादशाह था, अचानक से बीमार हुआ और लोगों ने बहुत सा इलाज करवाने की उसकी कोशिश की लेकिन कुछ ना बना। एक शख्स आया और आके कहने लगा कि फलां जगह जो है ना, 10 बंदे एक पहाड़ी के नीचे बैठे हैं इस ख्याल के साथ कि जब बादशाह मर जाएगा तब हम यहाँ से उठेंगे। तो किसी ने कहा, उनकी गर्दनें उतारे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बादशाह अकलमंद था, कहने लगा कि नहीं, 10 बंदे एक पहाड़ी के नीचे बैठे हैं इस ख्याल के साथ कि जब बादशाह मर जाएगा तब हम यहां से उठेंगे। तो किसी ने कहा, उनकी गर्दनें उतारे, किसी ने कुछ कहा।

0: उसको पूरा निभाएं।
1: ठीक,
0: यानी दुनिया छोड़ देनी हर चीज़, क्योंकि ये खालिक ने बनाया निज़ाम, वो तो नहीं चाहता कि आप छोड़ें। वहाँ से वो एक सिलसिला चला, और जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं हमारे मज़हब में वो है असहाब सुफा से।
1: ठीक,
0: वो जो जिन्हें हम कहते हैं सहाबी, जो जिसे हम समझने के लिए आम जुबान में थड़े वाले जो थे, एक चबूतरा था
1: हाँ।
0: उस पे बैठा करते थे, वो लोग थे, वो साहिबान थे कि जिनके पास रहने के लिए कोई ऐसा घर नहीं था, इस्लाम में आ चुके थे। उन्होंने उस मुफलिसी के आलम में भी इस्लाम की तालीमात पर अमल शुरू किया, जो मुयस्सर था उसको खा लेते थे, ना मिलता तो सब्र करते थे।
1: अच्छा,
0: वहां से ये सिलसिला चला, और यही प्रैक्टिस एक्चुअली पीछे से भी चली आ रही थी कि राह खुदा में सफर करते हुए दुनिया का मामलात को, दुनिया के तर्क करके महज अपने आप को उसकी जात से जोड़ लेना और कुछ नहीं करना, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसके लिए वक्फ कर देना। दिस इज हाउ इट इज़ एक्चुअली, जिसको कहा जाता है तसव्वुफ़। और इसमें इल्म भी है, इसमें प्रैक्टिस भी है। महज खाली प्रैक्टिस होगी तो वो उस औज और मेराज को नहीं पहुंचता जो इसकी मीरास है। और इल्म के साथ प्रैक्टिस है, जिस तरह हज़रत मियां मीर को देख लें, हज़रत दाता अली हजवेरी को देख लें, इस तरह बड़े बड़े औलिया हैं, किसी अच्छे मदरसे से आए, किसी अच्छे स्कूल ऑफ थॉट से आए, पढ़ने के बाद मुकम्मल तालीम हासिल कर लेने के बाद तशरीफ लाए, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिसेस की। कशफुल माजूब को पढ़ना शुरू करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड, आप देख के परेशान होते हैं, ये तो बड़ा औखा जहा काम है, ये तो कवाली सुनने के बड़े मसाइल हैं। वो तो कहते हैं कवाली महफिल समा, कवाली भी नहीं महफिल समा, जो समा सुनने के लिए आ रहा है बावजू हो के आए नमाज पढ़ता हो, और जो कवाली के लिए आए वो नमाजी होना जरूरी है।
1: अच्छा,
0: अगर नहीं है तो उसके तकादे पूरे नहीं है,
1: अदाब है
0: ये, अदाब है। सो तसव्वुफ इज नॉट एन ईजी थिंग, यहाँ पे सोचना हाँ हाँ मैं सुन लिया बस, ऑल टाइम मैं गर्क रहता हूँ थॉट में, या मुझे इस तरह की चीज़ों का शौक है, या इसमें इन हूँ तो मैं सूफी थॉट हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, सब सॉरी टू से बकवासियात है। आम जिंदगी से ज्यादा इस्लाम को खुद पे तारी करने वाला सूफी होता है, और जो चीजें वहां कही गई हैं उससे भी ज्यादा वो इम्प्लीमेंट खुद पे करता है कि ये ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। आप तज़किरतुल औलिया किताब अगर पढ़ना शुरू करें आप हैरान हो जाएंगे, वो पानी का एक कतरा ना गिर जाए कि कल को मुझे इस पे ना पकड़ ले, इस तरह की गुफ्तगू आपको मिलती है कि पानी का कतरा गिर गया है मुझे मेरा खालिक इसके ज़िया पे ना पकड़ ले, तुमने ज़ाया कर दिया।
1: सेब गलती से खा लिया जाता है और उसके ऊपर नौकरी की जाती है इतना अरसा, अदूर गौसे आज़म,
0: हाँ
1: तो ये इस तरह के वाक्या
0: उसमें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा
1: मुताद चीजें।
0: सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज।
1: बिल्कुल ऐसे ही। और ट्रैक अब मेरे ख्याल में क्या सुनना पसंद फरमाएंगे आप? वैसे क्या पसंद क्या करते हैं, म्यूजिक किस तरह का पसंद?
0: मुझे अभी कज़लबाश का सुना है, मुर्तजा कज़लबाश का। तुम
1: मुर्तजा कज़लबाश का कौन सा?
0: तुम
1: वैसे आपको कैसा म्यूजिक पसंद है?
0: आजकल तो फैज साहब की या दूसरी तीसरे बड़े बड़े शोहरा की जो गजलों के गाने हैं, जो आपको मैंने ख्याल है मैंने शायद बताया था, जो मैं अपने शो में भी आजकल लगाता हूँ, वो बहुत खूबसूरत मॉडर्न कंपोजिशन में बने हुए।
1: अच्छा,
0: चास आती है यकीन करें।
1: अच्छा,
0: हाँ हाँ,
1: तो लगाते हैं ना
0: अभी पहले ये
1: लगा, ये लग गया जी, अभी ट्रैक चल रहा जी हमारे,
0: उसके बाद एंड पे लगाएंगे हम इंतजार।
1: अरे वाह, हमारे जी आज के मेहमान और मेहमान की ख्वाहिश के ऊपर, चूंकि आज जो कुछ भी हो गया मेहमान की ख्वाहिश के ऊपर ही होगा।
0: मेहमान बोल बोल के
1: सर, मेहमान को तो अभी हमने मजीद बुलवाना है, वैसे अगर मेहमान ना कहते तो हमने चार ही देना था।
0: आपकी मेहरबानी, थोड़ा वक्फा दीजिए।
1: बहरहाल जनाब, अभी बढ़ेंगे एक ट्रैक के जाने, और उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे। हमारे आज के मेहमान हमारे मेहमान हैं आर जे डॉक्स, जिनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरा दिल तो कह रहा है कि हम गुफ्तगू करते जाएं, लेकिन मेहमान की भी तो कुछ होते
0: मानते हैं यार, रोटी का जो वक्फा है वो गाने पर रखना।

0: ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان, اور مہمان ہمارے میں آج کے ہمارے مہمان ہی از سچ اے امیزنگ پرسنالٹی, اور جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں 04221100101. اس کے ساتھ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ آپ ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں. ویل جناب, وہ ایک شعر ہے نا کہ کالے میٹھے کپڑے تے کالا میٹھا ویس, گناواں بھریاں پھریاں لوکی کے اندر ویش. بلیک کلر کافی پسند ہے آپ کو, کالا رنگ ہے نا. جی میں نے آپ کو دیکھ کے نہیں کہا, ویسے مجھے شعر یاد آ گیا کہ آج بلیک شرٹ میں نے بھی پہنی ہے, آپ نے بھی پہنی ہے. اتفاق ہوتا ہے کہ میرے گیسٹ نے بھی میرے جیسے کپڑے پہنے ہو کلر, تو ویسے آپ کو بلیک کلر پسند ہے
1: بہت زیادہ.
0: یو لو بلیک کلر
1: بہت زیادہ.
0: اس کی کوئی خاص وجہ؟
1: جاذب نظر ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے, مسٹری کریٹ کرتا.
0: اچھا, بعض لوگ منع کرتے ہیں بلیک کلر پہننے سے,
1: اور روایتیں ساری ہماری بنائی ہوئی
0: ایسی کوئی نہیں
1: ہے.
0: بعض کہتے ہیں کہ یار یہ کلر نہیں پہننا چاہیے, یہ نہیں پہننا چاہیے, یا پھر بندے کا نام پوچھ کے اس کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں, وٹ ایور جو بھی وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار تم نے یہ کلر کبھی نہیں زندگی میں پہنا, یہ کلر زیادہ پہنو.
1: وہ نال پھر ہونا چاہیے تھا, یہ کہنا ہے ڈو اینڈ ڈو ناٹس کا ساتھ پیدا ہوتا ہی ایک چٹ آنی چاہیے تھی. یہ بچہ آپ کو دیا ہے جڑا سیمپل اسی ٹو رہے ہیں, اس کو یہ کرانا ہے اور یہ نہ کرانا. اس طرح کا کوئی اگر سیمپل کے ساتھ نہیں آتا تو پھر سیمپل کو جو دل کرتا ہے پہننے دے.
0: یہ بھی ہے. اچھا ایک اور بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا پہلے وقتوں میں, اب شاید کم ہو گیا ہے, لوگ بچوں کے نام رکھتے تھے, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نام چینج کر دینا. نام چینج کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, کسی نے کہا نام بڑا پا رہا ہے اس نام کو بدل دو.
1: وہ دو دو تین تین من دے نام ہوندے سی, وہ بچہ بےچارا کبا ہو جاتا سی.
0: نہیں نہیں, بڑی بڑی عمروں میں جا کے پانچ پانچ دس دس سال, پندرہ پندرہ سال میں, بیس بیس سال میں لوگ نام چینج کر دیتے. کیا نام ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ نام بھاری ہو گیا جی؟
1: نام بھاری تو نہیں ہوتا, اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں, افیکٹس ہوتے ہیں.
0: نام کا پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے؟
1: افیکٹ آتا ہے.
0: اچھا
1: بالکل آتا ہے, ہر چیز کا آتا ہے. ایک لفظ جو آپ بولتے ہیں وہ اثر کرتا ہے. نام تو بڑی دور کی بات ہے, آپ میں بولتے ہیں, آپ کی میں محض اتنا لفظ ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے.
0: اچھا
1: آپ مائک پہ بیٹھے ہیں, ایک عرصہ سے بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور اس عرصے میں اگر آپ کہیں کہ میرے میں کہنے کے مختلف انداز ہیں, تو آپ کے میں کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک.
1: اور اس پہ تو خیر بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے, مخائل نعیمی کی کتاب میں نے پڑھی تھی, بہت اچھی ہے. اور میرداد اس کا نام ہے, کتاب میرداد. میں پہ بڑی بات ہے, میں پہ ساری باتیں, اور ایک مکمل نام ہونا اس کا امپیکٹ آتا ہے. بالکل آتا ہے.
0: یعنی نام کا آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کے مزاج پہ, آپ کی رویوں کے اوپر, آپ کے زندگی گزارنے کے اوپر امپیکٹ آتا ہے.
1: امپیکٹ آتا ہے. پھر اس کے علاوہ سنتے ہیں آپ, آپ کو آپ کے نام سے جڑی کوئی نہ کوئی فیمس پرسنالٹی کے بارے میں ضرور بتایا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چلتا ہے, تو وہ آپ کے بیک آف مائنڈ رہتی ہیں چیزیں.
0: بالکل ایسے ہی. اور نام کا امپیکٹ ایسا ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے, اس نسبت سے, اس محبت اور اس عشق سے, کہ اس نام کا امپیکٹ تو پوری کائنات پر,
1: پوری کائنات پہ. بالکل,
0: سب سے زیادہ نام یہ رکھا جاتا ہے. اچھا ناموں کے ساتھ ساتھ جو کلرز ہیں, رنگوں کا امپیکٹ, کلرز کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کے بھی تو رنگ ہوتے ہیں نا, تو اس رنگوں کا انسان کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟
1: تو آپ کے فزیکلی تو امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور سائیکولوجیکلی بھی امپیکٹس آتے ہیں. مجھے اگر آپ کسی کمرے میں رکھ دیں جہاں پہ صرف محض یلو کلر ہے, محض یلو ہے صرف, ہر چیز پیلی ہے, تھوڑی دیر بعد آپ آئیں گے میں الٹا ہوا پہ آؤں گا.
0: اچھا
1: ہاں, میں نہیں بیئر کر سکتا زیادہ یلو, ہر طرف یلو. ہاں ایک اسپیسیفک شیپ میں, ہاں ڈریس ہے, ڈریس کسی کے اوپر اچھا لگ رہا ہے, کسی کے اوپر اچھا لگتا ہے, وہ جاذب نظر ضرور ہوگا, اٹریکٹ کرے گا, اچھا لگے گا, وہ تعریف بھی کروں گا, یار یو لک پریٹی ان یلو. لیکن اگر سچویشن کی بات کریں, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹراما ہوگا, آئی ہیو اے ٹراما. میں یلو کس یلو کلر کی ایک بس میں نے ٹریول کیا تھا, مجھے وامٹنگ ہو گئی تھی.
0: اچھا
1: और शदीद किस्म की वॉमिटिंग हुई थी। उसके बाद से मेरे अंदर वो चीज़ बैठ गई है, मैं नहीं उसको बेयर कर पाता फॉर लॉन्गर पीरियड। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। फिर मोर दे डिफाइन योर सेल्फ, आप कलर कौन सा पसंद करते हैं वो आपकी ज़ात को डिफाइन करता है पहले,
0: ठीक,
1: बाद में इफेक्ट लाएगा। आप काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, आपकी ज़ात को बता रहा है किस तरह के हैं। इफ़ यू लाइक ब्लू कलर यू आर मोर प्रोफेशनल, यू लाइक टू बी ए प्रोफेशनल पर्सन। इफ यू लाइक ब्लैक कलर यू लव टू बी ए मिस्टीरियस पर्सन। इफ यू लाइक वाइट कलर यू वांट टू लिव इन पीसफुल लाइफ। So these are the
0: अच्छा,
1: things.
0: White color is sign of peace.
1: Peace. It also includes professionalism. Hospital है, बड़ी बड़ी जगह पे चले जाए वहाँ पे अमन और सुकून and peaceful impact दे रहा होता।
0: कोई ऐसा रंग है जो इंसान की नफसियात को बदल देता है?
1: सारी बदल देते हैं ना यार, इम्पेक्ट आ रहा होता है ना, कौन सा रंग नहीं बदलेगा। रेड कलर बहुत डोमिनेट एंड लाउड कलर है, फौरन बदल देता है देखने वाले को और पहनने वाले को भी। आपकी ज़ात पे असर ही उसका अलग आता है। सुर्ख रंग बहुत ही अलग किस्म का असर देता है। आप किसी को पहना हुआ सुर्ख जोड़ा देखें, इम्पेक्ट और है। शादी पे क्यों पहनती हैं दुल्हनें?
0: डिफरेंट लगने के लिए,
1: और है उसका एक अलग और है पर्सनैलिटी के ऊपर, देखने वाले के ऊपर भी। वाइट कलर और अलग है, शादी पे वाइट कलर भी पहनती हैं, लेकिन अरूसी जोड़ा जो होता है वो ज़्यादा वो रेड है, शोख है ना। आपकी नफसियात पे असर, देखने वालों पे भी असर और डालता है। बाकी इस पे तो कह ही रहा हूँ आजकल मैं,
0: प्रोग्राम कर रहे हैं बाकायदा इसमें। अच्छा ये जो ऑरा है इंसान की पर्सनालिटी का ऑरा, और कुछ ऑरा ब्रेक हो जाते हैं, कहते हैं यार इसका ऑरा बड़ा ब्रेक हुआ हुआ है, ये बंदा टूटा हुआ है अंदर से, मसला हुआ है, ऑरा ब्रेक, फिर उसकी रिपेयरिंग हो सकती है?
1: हाँ होती है, हर चीज़ होती है। यू इमेजिन ए थिंग यू कैन डू एनी थिंग,
0: ये खुद बंदे ने करनी है,
1: खुद करनी है। समटाइम एक्सटर्नल पावर्स भी होती है, कोई अच्छी तगड़ी किस्म की ताकत आए जिस तरह आपको खींच के ले जाती।
0: अच्छा,
1: उसी तरह से आप किसी बंदे से मिलते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे एक वीडियो दिखाई एक साहब की, उन्होंने मजबूर किया आपको उस वीडियो ने, आप चले गए मिलने के लिए, कहाँ लाहौर से आप सियालकोट चले गए।
0: बिल्कुल गया मैं मिलने।
1: इसी तरह किसी चेहरे को देखकर आप जिंदगी बदलने का सोच लेते हैं कि नहीं यार आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ, आप उसके कहने पे फिर सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अपना पहनावा बदलते हैं। अब तुम कभी काला पाते हो, कभी चिट्टा पाते हो, कभी नीला पाते हो, कभी ब्लैक एंड वाइट पाते हो किसी के कहने पर। सो आपको बार बार तोड़ के बनाया जा रहा होता है, लेकिन वही करेगा जो आपसे ज़्यादा ताकत रखता है, या आपको ताकतवर इम्पैक्ट दे रहा है, या थॉट है जो आपकी ज़िंदगी में ही अक्सर एक नई तब्दीली ले आता है, उसके बाद आप करते हैं। इट हैपेंस, चेंज होता है। बचपन में आप और थे, यूनिवर्सिटी में और थे, आज आप और हैं, कल आप और होंगे। वक्त के साथ साथ आप खुद भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहते हैं। It happens.
0: अच्छा ये जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, अब जैसा ख्याल या थॉट आपकी, इट्स, आपने पहले भी बताया कि ख्याल बहुत बड़ी ताकत है, और जैसा वासिफ साहब भी कहते हैं हालात ख्यालात से बनते हैं।
1: शो कदम मुकना
0: है, शो असर मुकना,
1: शुक्र है मैं छेती नहीं आया। देखे नहीं वो, अब आप लेस करें 25 को।
0: अच्छा नहीं, थॉट प्रोसेस जो है इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है? अब थॉट प्रोसेस में ये है कि थॉट इज ऑल योर फ्यूचर, आज जिस पर आप फ्यूचर भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपकी सोच, आपका ख्याल। अब ख्याल जो है ना वो मुंतशिर हैं आजकल, तो देखते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बेचारे घिरे हुए हैं।
1: आप थॉट प्रोसेस को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले इस पर बात करें।
0: सर थॉट प्रोसेस ये है ना कि आपका ख्याल है और उस ख्याल के अंदर आप गुम हैं, और वो ख्याल आपकी जान नहीं छोड़ रहा, उस ख्याल की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, उस ख्याल की वजह से आपकी ज़िंदगी मुंतशिर है, उस ख्याल की वजह से आप नहीं ठीक डायरेक्शन की तरफ जा रहे, बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, आपको नहीं समझ आ रहा कि माइट भी आपका वो विजन नहीं है, आपका वो ख्याल अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा, बट देर इज़ समथिंग कि आपकी थॉट प्रोसेस इतना मिच्योर नहीं है या ठीक नहीं हो पा रहा, जिससे आपकी जो फ्यूचर है या आपकी करंट लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है।
1: सर थॉट प्रोसेस, इसकी अगर सादा सी तारीफ की जाए, अपने अंदर से ही अपने सवालों के जवाब तलाश करने का नाम होता है। कि मैं अपने अंदर बहुत सारे सवाल अपने आप से करता हूँ, वो थॉट्स की शक्ल में होते हैं और उनके जवाबात मुझे चाहिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। अब उसमें अगर मैं डेडिकेशन के साथ लगाऊँ किसी एक शय में, तो इसका मतलब है मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है और मैंने तय कर लिया है, अब मैं फोकस हूँ ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि ये करना है और उसके लिए अब मैं कदम उठा रहा हूँ, उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उन्हें अचीव करते आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस है और आपको नहीं पता चल रहा, जिसका आप बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय फ्यूचर, इट मींस कि आपका यहाँ तो ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत वीक है, आपकी इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन निसाबी नहीं है, तालीम महज निसाबी नहीं होती। जब आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, मुस्तकबिल का कतई तौर पे ताल्लुक आपकी डिग्री और निसाब से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अपने जहन की साख्त, आपकी शनाख्त और आपकी तरजीहात क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। जब आपको पता हो आप करना क्या चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, मुझे पता है मैंने फलां चीज हासिल करनी है, फलां जगह पे पहुंचना है, फलां बंदे को हासिल करना है, तो मुझे पता होगा फिर उसके लिए छोटे छोटे थॉट प्रोसेसेस से गुजरता रहूंगा। एक क्योंकि मैंने बड़ा कर लिया कि मैंने क्या करना है, हाँ या ना में जवाब ले लिया, मुझे ये करना है या नहीं, हाँ करना है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अब कैसे करना है उसके लिए छोटे छोटे थॉट प्रोसेसेस चलते रहेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज।
0: इधर आओ बेटा।
1: हो गया जी, हो गया सर। अच्छा।
0: चलें जबरदस्त, हो गया जी, थैंक यू सो मच। आप बैठे रहें आराम से।
1: अच्छा।
0: ना ना नहीं जहमत करो।
1: तो ये थॉट प्रोसेस आपके फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, फ्यूचर आपने खुद डिफाइन करना।
0: अच्छा सर,
1: क्योंकि फिर थोड़ी सी सॉरी मैं यहाँ पे क्लैरिटी ले आऊँ ना, हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने ये सोचा है मैं ये करूँगा और मेरा दिमाग कहता है इस चीज़ को डिसाइड करना, नहीं, आपका दिमाग आपके जिस्म में मौजूद एक वज़ीर की हैसियत से काम करता है जो आपको मशवरे देता है आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। ख्वाहिश आपकी दिमाग से नहीं आती, ख्वाहिश आपके अंदर से आती है। आप आम भी बोलते हुए गुफ्तगू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे अंदर ये ख्वाहिश आएगी, मेरे अंदर से आई। कुरान ने कहा कि कलूब हैं मगर सोचते नहीं, वो जो कल्ब है ना अंदर, इस दिल की बात नहीं है, दिमाग की बात नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स इनसाइड मी जो ख्वाहिशात को ट्रिगर करती है और दिमाग उस पर सोचता है। थॉट प्रोसेस दिमाग का काम है
0: और इस पर काम करना आपका काम है।
1: हाँ, इस पर वो मेरी तरह सुते रह जाओ तो और गल है। अच्छा, 15 मिनट और सही, 10 मिनट और सही, कल करेंगे।
0: अच्छा सर, ये जो कम्फर्ट जोन है जिसमें हमारी आधी से ज़्यादा नेशन होती है, इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हम, जो इस भी इन्वायरमेंट में है, वी डोंट वांट टू ग्रो आवर सेल्फ, ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, व्हाई?
1: चल, फितरी अमल है, कंफर्ट जोन में सारे ही कंफर्ट जोन में रहते हैं।
0: नहीं, बाज़ अगर आपको ग्रोथ चाहिए, बाज़ अगर आपको अपने आप को प्रोग्रेस करना है, आपको आगे जाना है,
1: आपकी कंफर्ट ये है कि यू वॉन्ट टू ग्रो, उसके लिए आप अपनी आम की जिंदगी, जो आम के मामला, छोटी छोटी आपकी आसाइशें हैं, उन्हें छोड़ते हैं। आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, थिंकिंग अबाउट समथिंग बिगर इन फ्यूचर। आपका कंफर्ट जोन है, आप कहते हैं कि अच्छा मैं हुणे उठांगा फिर की होएगा, मैं स्कूले जावांगा फिर की होएगा, अच्छा मैं डिग्री हासिल कर ली फिर क्या होगा, डिग्री हासिल कर लेने के बाद अच्छी जॉब मिलेगी अच्छा फिर क्या होगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी पैसे मिलेंगे अच्छा फिर क्या होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे फिर अच्छी शादी हो जाएगी अच्छा फिर क्या होगा, शादी हो जाएगी तेरी बीवी होंगे तेरे बच्चे होंगे अच्छा फिर क्या होगा, उसके बाद उन्हें कोई नहीं, फिर बच्चे तेरे बड़े होंगे तो बह के आराम करी, बच्चे कमाएंगे खाएं, खानदार रहें, सुकून करी, तो लम्बे प्यार रहें, उन्हें कहा उदो भी लम्बे पैना, मैं हूं लम्बे प्यार रहना, तो मैं पागल है अली मेहनत करके दोबारा मैं लम्बे ही पैना है, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਿਆ।
0: ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
1: तो थिंग इज के आप डिफाइन करते हैं आपके गोल क्या है। आपने कोई अचीवमेंट करनी है, नहीं करनी, आपके अंदर से कोई अर्ज है, नहीं है। आपके गोल्स आपके कंफर्ट जोन को फॉर्म कर रहे होते हैं। एक सर्टेन लेवल आता है, उसके बाद आप चीज़ें बदलना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ आप लेट जाते हैं मेरी तरह, सुते रहते हैं मौका मिल जाए तो,
0: 50 मिनट लेट आते हैं
1: कहाँ या फिर आप फंसे रहते हैं, जुमा हफ्ता इतवार भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको जाना है तो जाना है, फिर क्या करें। सो ये आपका और मेरा जाती फेल है। नहीं आना या आना है, ये आपके और मेरे कहने से कभी मुमकिनात में नहीं आ सकता। अगर ऐसे होता आज शायद आप किसी और जगह पे होते, आप कुछ और कर रहे होते, आपके पास बहुत सारे लेकिन हैं, काश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको भी समझाया, बहुत सारी चीज़ों में आपको समझाया गया, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने समझाया। मैं तो खैर बेशर्मों की तरह कहता हूँ, वेयर एवर आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं इधर खुश हूँ जी, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास ये कोई रिग्रेट नहीं है, ऐसे या काश या ये नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल। बस ये है, एक दफ़ा मेरा मूड है ज़रा, मैं जाके ना वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का विजिट कर रहा हूँ, बस दिस इज माई विश, नहीं वर्ल्ड टूर नहीं, स्कैंडिनेवियन, जितने मतलब मैं चाहता हूँ रात 6 दिन रात देख के आऊँ बस,
0: अच्छा
1: कंटिन्यूसली वो दिन देखूँ, वो रातें देखूँ, जो 6 दिन रात ही रहे, 6 दिन घड़ी को देख देख,
0: मैं
1: आई वांट टू एंजॉय दैट डिप्रेशन, मतलब आई एंजॉय दैट बिकॉज़ आई लव इट, सो दिस डिफाइंस माय कंफर्ट जोन। ये सारी चीजें मेरी
0: है। सर इशारे कर रहे हैं, मुंडा बड़ा डाडे सा
1: यार, तुम किस किस्म के इशारे कर रहे हो?
0: मैं अपने बड़े भाई को बताऊंगा तुम। सर जी लास्ट क्वेश्चन,
1: शुक्र है, हूं तो मैं भी कहूंगा इशारे का यार।
0: लास्ट क्वेश्चन, हां
1: जी प्लीज।
0: सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक टू यू, लोग बहुत से लोग जो है ना अपने कैलिबर होने के बावजूद, अपने अंदर एबिलिटीज स्किल्स हर चीज होने के बावजूद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कैसे पैदा करें?
1: सर हो आप, आपको क्या समझ आता है, व्हाई वी लूज इट?
0: बस कुछ हालात कुछ मामला,
1: सवाल ये निशान है मेरा बहुत बड़ा। मुझे मिलते हैं लोग, हाँ सर्टन टाइम पीरियड के लिए अगर होता है वो एक फितरी अमल है,
0: ठीक है,
1: मतलब फौरी तौर पे आई एम शॉक्ड, मैं हिट हुआ किसी चीज से, वो अंडरस्टैंडेबल है, उस वक्त रुक जाना बैठ जाना और ठीक है फाइन, वो प्रोसेस का टाइम होता है जिसे थॉट प्रोसेस कहते हैं, उसमें प्रोसेसिंग मेरे अंदर चल रही है, मेरे अंदर तकलीफ भी है, मेरे अंदर गम भी है, मेरे अंदर गुस्सा भी है, वो चलेगा, वो फितरी अमल है। लेकिन अगर मुस्तकिल उसे लेके बैठ जाऊंगा तो सवालिया निशान है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों शेक हुआ, क्या उसके अलावा दुनिया में और कोई चीज मौजूद नहीं? कुछ लोग हैं यंग जनरेशन की बात करते हैं, वह हैपन यार, मेरा दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, इतने साल गुजर जाने के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, ओके फाइन हो गया, ठीक है, टाइम लो अपना, हील योरसेल्फ, आपने हील कर लिया, Eventually you have to move on. If you don't move, you're gonna waste your life. दुनिया में billions, कितने billion हैं? मेरा ख्याल है आजकल
0: 8 अरब,
1: इतने लोग हैं यार, उन्हें से कोई एक तो होएगी ना, या होएगा ना, है ना?
0: असद को मसला मिल गया ये सुन के बाद,
1: हाँ कोई तो होगा ना आपके लिए। तो इसी तरह से कोई और मामला है, कहीं पे आप हेटू हैं,
0: जी जी,
1: कहीं पे कुछ हुआ है, कोई मसला हुआ है,
0: बिल्कुल ऐसे,
1: so it's not a big deal.
0: सर थैंक यू सो मच।
1: तो कॉन्फिडेंस बनने के लिए sir. आपको किसी एक्सटर्नल पावर की नहीं जरूरत, आपको अपनी डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, वो जो माजी का वाकया है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पहला स्टेप डिफिकल्ट होता है हमेशा, देन यू गोना बी ओके,
0: ठीक हो जाता सब,
1: हाँ खुदा से अच्छी किस्मत मांगनी चाहिए, ये हजरत अली का कॉल है।
0: क्या बात है, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया। 56 मिनट अभी हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में करेंगे
1: 56 मिनट
0: जब हम लेट ओके जनाब, न्यूज़ ब्रेक के जाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।
2: तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और ईरानी वज़ीर दाखिला ने आए रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बरतानिया ने तरक्याती शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। भारत के दारुलहुकूमत दिल्ली में इम्तहानी पर्चा जात लीक होने के खिलाफ आज मुसलसल दूसरे रोज हजारों नौजवानों का एहतजाज।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101.

0: New Glycolic Bright.
1: Click up.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

मिटक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी।

तक सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं तक सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं तक सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं तक सो गया हूँ और चुप हो गया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो। लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what you

तक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101.
3: आवाजें चुप होती हैं पर जज्बात बोलते हैं।

0: सुनते रहिए हर रात 12 से 2 मंगल और जुमा ओनली ऑन FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
3: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। आज फिर से मैं सोच रहा हूं कि कहूं या न कहूं से पहले क्या कहूं, कह भी दूं या फिर रहने दूं। कभी कभी कहना बड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी किसी खास मुकाम पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। दिल चाहता है, दिल से कहीं ना कहीं ये आवाज आती है कि कह देना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर कह दिया तो फिर कितने मजीद पहाड़ होंगे जो सर करने पड़ेंगे, कितने मजीद दरिया और समुंदर आएंगे जिनको पार करना पड़ेगा। आज भी मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और यकीनन मैं चाहता हूँ कि इस कहने और बताने के साथ साथ आपकी बातें भी हों, सुनने का अमल भी हो। कहते हैं कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम किसी को बैठ के तवज्जो से सुनना है, तो चलें आज आपको हम भी सुनेंगे और आप भी कुछ कुछ मुझे सुन लीजिएगा। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, मैं हर मंगल को 12 से 2 प्रोग्राम हरफे जुनू लेकर आता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी, जैसे जैसे भी, जो जो समातें मेरी आवाज़ के साथ टकरा रही हैं। अब ये समातें मेरी आवाज़ के साथ टकरा रही हैं या मेरी आवाज़ आपकी समातों के साथ टकरा रही है, ये भी एक पहेली है। मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। बहरहाल शुक्रिया उन तमाम समातों का कि जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छे लोग हैं आप, कैसे कर लेते हैं। अब हमें सुनने के साथ साथ मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, रابطے रख सकते हैं। रابطے रखना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो छूट गए हैं सिर्फ इस वजह से कि रابطہ नहीं रहा।

04221100101 पे आप हमें कॉल करते हैं। इस वक्त हम लाहौर से बराह रास्त हैं, सो अगर आप किसी भी दूसरे शहर से कॉल करेंगे तो 042 आपने ज़रूर डायल करना है, 042 फिर 111001101 हमारा नंबर है। 4471 पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं, बड़ा महंगा SMS होता है लेकिन फिर भी कुछ दोस्त करते हैं। 4471 पे आप हमें मैसेज करेंगे, अपने मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे और मैसेज टाइप करेंगे, 4471 पे भेजेंगे। आपका मैसेज जैसे ही मिलता है उसको ज़रूर शामिल करूँगा। और सबसे आसान सादा तरीका है फेसबुक पे, आप हमारे साथ आ सकते हैं और वहाँ पे आप हमें मैसेजेस, कमेंट्स, अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है FM 101 लाहौर, सर्च कीजिएगा आपको हमारा पेज मिलेगा, इसमें पहली पोस्ट होगी, कमेंट कर सकते हैं, आके फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो भी बता सकते हैं और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भी बता सकते हैं। इसको कैसे मज़ीद ठीक किया जा सकता है, कौन सी बात है, किस तरह की गुफ्तगू है जो आप सुनना चाहेंगे, बातों को, गुफ्तगू को किस धारा पे, किस रुख पे मोड़ना चाहेंगे, आइए बात करते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, क्या ख्याल है? बारह बारह हुए जाते हैं, बारह बारह, बाईस छब्बीस,

0: अखियां। कुछ गाने, कुछ बोल, कुछ गीत, कुछ धुने आपको कहीं और ले जाते हैं ना।
1: तेरे लाल क्यों लाया अखियां,
0: तेरे नाल क्यों लाई अखियां। आ गया ना सब कुछ याद।
1: बेपरवाह मैं तेरे इश्क जुबंधियां।
0: हाय, सुनते रहे साथ साथ रहे 101 पे। मुझे जया अंजुम कहते हैं।

मासूम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। भाईजान हकीकत में आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपसे राज़ी हो। भाईजान मैं आपको पेरिस फ्रांस में सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा और मुनफरिद अंदाज है आपका। कोई अपने बहुत प्यारे अंदाज में कुछ चंद शेर ही सुना दें भाईजान, मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉल करने की। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी साइम तबस्सुम साहब, आप हमें पेरिस फ्रांस से सुन रहे हैं। पोइट्री शामिल करते हैं, ज़रूर शामिल करते हैं। कौन सी शायरी सुनना चाहेंगे आप? अभी आते हुए एक गजल मेरे जहन में गूंज रही थी और मैं सोच रहा था कि आज शायद मैं इसको शामिल करूं। नौशी गिलानी कहती हैं कि क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, जब हरा दें मुकद्दर की चालों के दुख। जिनकी आंखें नहीं वो ना रोएं कभी, जान जाएं अगर आंख वालों के दुख। मेरी मंजिल कहां, हम सफर है किधर, मेरी मंजिल कहां, हम सफर है किधर, हिजर से बढ़ गए हैं विसालों के दुख। क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, जब हरा दें मुकद्दर की चालों के दुख।

अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है यूं है। अच्छा जी, आज हम सवाल कर रहे हैं कि खुशी, खुशी पर सवाल कर रहे हैं, हैप्पीनेस, इतनी खुशी। कुछ लोग बड़े खुश रहते हैं, कुछ लोगों की शक्ल जो होती है वो बड़ी हंसमुख शक्ल होती है, उनको देखो तो उनको देख के खामखा आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मासूम लोग होते हैं। जमाने से ज़रा हट के साइड पे एक स्पेशल से कुछ पीस पड़े होते हैं, उन पे असर नहीं होता ज़माने की बहुत सारी हवाओं का, आंधियों का, गर्दोगुबार का। तो आप जब भी उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं, तो उनके चेहरे पे वो ख़ास किस्म की एक तमानियत होती है, एक ख़ास किस्म का पुरसकून चेहरा होता है, और एक ख़ास तरह की एक मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पे, कि उनको देख के आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। और कुछ चेहरे तो ऐसे होते हैं कि उनको देखो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी गुस्सा करेगा तो अभी गुस्सा करेगा। बहरहाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या है खुशी, क्या है और खुश कैसे रहा जा सकता है, खुशी का राज क्या है। आज हम सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो। आसपास इर्द गिर्द कोई भी शख्स आता है, कुछ देर के लिए बैठता है, तो पता चलता है वो भी बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। तरह तरह की परेशानियां हैं, परेशानियों की अपनी अपनी नौइयत है, किसी के लिए कुछ परेशान कुन है और किसी के लिए कुछ परेशान कुन है, और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है खुश होने के लिए, हर कोई भाग रहा है खुशियों के लिए, हर कोई चाहता है कि अच्छे दिन आए, अच्छा वक्त आए। कैसे आएगा वो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खुशी तो आपके अंदर होती है, इसका ताल्लुक बाहर की चीजों से नहीं होता, आपके अंदर से होता है। तो वो अंदर से कैसे खुश हुआ जा सकता है, बताएं ना मुझे, आएं बताएं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, और राय देने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा 04211100101 पे। अब से मैं आपकी कॉल्स ले रहा हूँ, और देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई।

तो आज हमें कॉल्स नहीं आ रही, बिल्कुल भी कॉल्स नहीं आ रही, कोई कॉल नहीं आ रही, घंटी नहीं बज रही। तो अगर घंटी नहीं बज रही तो फिर आपके मैसेजेस देख लेते हैं, और जब घंटी बजेगी यहाँ पे टुंग डुंग होगा तो फिर हम फ़ोन भी उठा लेंगे। माँ जबीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आरजे ज़िया वालेकुम अस्सलाम, फराफ़ज़ाल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। खुशी तो हमारे अंदर होती है, और अगर सच्ची खुशी चाहिए तो थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं, उन्हें देखें, उनकी शरारतें आपके अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखेंगी, और वो जेन्युइनली जेन्युइन पल होते हैं खुशी के जो आप बच्चों के साथ बिताते हैं। बाकी तो दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है, या फिर पुराने दोस्त जो आपके अंदर की खुशी को बाहर ला सकते हैं। नाइस शो, स्टे ब्लेस्ड। और आपने कहा कि खुशी तो अंदर होती है, लेकिन फिर आपने कहा कि बच्चे या दोस्त, तो ये तो फिर एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, या आपको बच्चे चाहिए। अब किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो फिर वो क्या करे, या किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके आसपास नहीं है बच्चे, तो कहाँ से लेके आए बच्चे। पता है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए, फिर आते हैं बच्चे। बहरहाल दोस्त वाला फैक्टर एक अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं मेरी नज़र में। वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी मौजूद ना हो, कोई भी आपके पास चीज ना हो, लेकिन फिर भी आप खुश हों, आपको फर्क ना पड़े कि कोई है या नहीं है। मेरा होना ना होना एक बराबर है, तुम अपने खालो खद को आईने में फिर निखरने दो, तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो, मेरे ख्वाबों को मरने दो, नई तस्वीर देखो फिर नया मकतूब लिखो, फिर नए मौसम नए लफ्जों से अपना सिलसिला जोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफाइक शुगल है बेकार लोगों का, तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है, खलिश दीमक जदा और आँख पर बोसीदा सतरों का जखीरा है, गुबारे हिजर सहरा में शराबों से अटे मौसम का खमियाजा, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, सफर में अजनबी लोगों से ऐसे हादसे सरजद हुआ करते हैं सदियों से, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। हाइजा अमीन है हमारे साथ और कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बारिश नहीं, क्या लिखा है ये, अस्सलाम वालेकुम बरीरा, बरीरा अतारिया फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, आयजा वाली आईडी है और बरीरा अतारिया फ्रॉम मुल्तान कहते हैं खुशी का ताल्लुक शुक्र सब्र में है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, सलामत रहें, खुश रहें, आमीन। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, खुशी का ताल्लुक जो है वो शुक्र और सब्र में है। वाह वाह वाह वाह वाह। वो वासिफ अली वासिफ का एक जुमला मुझे याद आ रहा है, फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो के मुकामे सब्र को मुकामे शुक्र बना ले। कभी कभी ना सब्र जो हम करते हैं वो हम मजबूरी से कर रहे होते हैं। वैसे तो सब्र की डेफिनेशन शायद कुछ और है, लेकिन अमूमी तौर पे हम सब्र किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारा बस नहीं चल रहा होता, जब हम हर तरफ से हार चुके होते हैं, कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही होती और हम हारे हुए बैठे होते हैं, तो हमारे पास सिवाय इस चीज़ के कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और बस चुप करके बैठ जाएं, गिला ना करें, और वो जो हो रहा है उसको बस कबूल कर लें, तो ये सब्र कहलाता है। एक अमूमी डेफिनेशन सब्र की ये है। लेकिन वासिफ साहब कहते हैं कि जो शख्स मुकामे सब्र को मुकामे शुक्र बना लेता है, यानी जब सब्र करना होता है, अपने आप को होल्ड करके रखना होता है, जब्त करके रखना होता है,
गिला नहीं करना होता, शिकवा नहीं करना होता। उस मुकाम पे जब आप बड़ी मुश्किलों से अपनी जुबान से गिले और शिकवे को कंट्रोल कर रहे होते हो, उस मुकाम पे जब आप शुक्र करने लग जाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो हम कहीं ना कहीं गिले या शिकवे ही करते हैं, कहाँ हम शुक्र करते हैं। और यकीन जानिए, जब तक हम शुक्र नहीं करते, हम खुश नहीं रह सकते। मुमकिन ही नहीं है ग्रैटिट्यूड और शुक्र के बगैर हम खुश रह सकें। बरीरा बड़ी खूबसूरत बात की है, हम इसको आगे यकीनन लेके चलेंगे। साजिद अली हमारे साथ हैं, साजिद अली शुक्रिया। और कहते हैं कि साजिद अली अब्बासी फ्रॉम इस्लामाबाद, प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, वेरी फनी। और जहा इंजम बाय जिया, जहा इंजम बाय ग्राट शो, आप अपनी आला रप्टा से नो। अच्छा, ये अब आपने क्या लिखा है, बहरहाल आपकी आपने जो लिखे हैं ना स्पेलिंग, मैं इस पे आपको ढेरों दाद देना चाहता हूँ। कैसे कर लेते हैं यार, इतना अच्छा अच्छा कैसे लिख लेते हैं। हसन अली कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू, आप सुनते हैं, इंतज़ार करते हैं कॉल्स। यार आज कॉल्स नहीं आ रही, कोई मसला है टेलीफोन लाइन में या कुछ और है? हेलो हेलो, आज बारिश हुई है ना, बारिशों के मौसम में, हाँ टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम है, और टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम की वजह से हम आपके कॉल्स आज नहीं ले सकेंगे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में।

बारिश है और बारिश की वजह से ये जो हम आपकी कॉल्स नहीं ले पा रहे होता है। बारिशों के मौसम में वो जो अपने कमरे की खिड़कियों को बंद करके बादलों के जाने का इंतजार करते हैं, वो भी एक ज़माने में बारिशों की बूंदों से खेलते रहे होंगे। 14वीं की रातों में जल्द सोने वालों की चांदनी से माजी में दोस्ती रही होगी। इश्को हुस्न की बातें आज वास्ते जिनके कुछ वक्त नहीं रखती, भूले बिसरे लम्हों में टूट कर किसी को वो चाहते रहे होंगे। वो जो अपने गम पर भी आंख नम नहीं करते, कल किसी की खातिर वो खूब रो चुके होंगे। दर्द आशना होकर अश्क खो चुके होंगे, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। बारिशों के मौसम में दिल की सरजमीनों पर गर्द क्यों बिखरती है, इस तरह के मौसम में फूल क्यों नहीं खिलते, लोग क्यों नहीं मिलते, क्यों फकत ये तन्हाई साथ साथ रहती है, क्यों बिछड़ने वालों की याद साथ रहती है। इतनी तेज बारिश में दिल के आईने पर से अक्स क्यों नहीं धुलते, जख्म क्यों नहीं मिटते, नींद क्यों नहीं आती। बारिशों के मौसम में आंख क्यों बरसती है, अश्क क्यों नहीं थमते। बारिशों के मौसम में

अच्छा जी, आपके मैसेजेस देखते हैं 4471 पे, जो आपके मैसेजेस अब तक हमें मिल चुके हैं। आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आज हम कॉल्स नहीं ले सकेंगे क्योंकि बारिशों की वजह से टेलीफोन लाइंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब्दुल नूर हाशमी कहते हैं रिवाज गार्डन से, जया भाई आदाब, हजार जूम करते हैं इसको। ओके ये ओके। आमिरा खान फ्रॉम शालकोट कहती हैं कि कैसे हैं जियाउल्लाह, काश। वैसे मेरा नाम जियाउल्लाह तो नहीं है, कैसे हो जियाउल्लाह, काश ता छत्तीस में मलियती में। अच्छा आमिर हाँ, आपने जो कुछ भी लिखा है यकीन जाने कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है आपने। बहरहाल मैं इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करूँगा कि आपने क्या लिखा है। रोमन में ही कुछ लिखा है और शायद आप कहीं और थी लिखते हुए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मा आज़म फ्रॉम लाहौर, ज़िया भाई कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं मिल रही, पिक हो जाती है, बैलेंस भी उड़ रहा है लेकिन मिल नहीं रही, ये क्या सीन है। मैं हेलो हेलो करके थक गई, आज आप हैप्पी हैं शायद Z4 जूबी आबी के शो में आने का मौका मिला है आपको, है ना। जी हाँ, आज सुबह आज जूबिया के प्रोग्राम में भी मैं कुछ देर के लिए, कोई 10-15 मिनट के लिए आया था और मुझे बड़ा शौक़ है, यकीन जाने बचपन से बड़ा शौक़ है रेडियो पे आने का। और कहते हैं कि खुश हूँ बट कॉल नहीं मिल रही, कुछ करें और बेनियाज हो के जीने में ही खुशी है। आई थिंक क्या बात है, बेनियाज हो के जीने में खुशी है। कॉल्स का सिलसिला आज हम नहीं ले पा रहे क्योंकि आज कॉल्स टेलीफोन लाइंस में कुछ डिस्टर्बेंस है, डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से हम आज आपकी कॉल्स नहीं ले रहे। सो आज सिर्फ एसएमएस और मैसेजेस पे गुजारा करना पड़ेगा। याद आया कुछ? फातिमा कहती है कि भाई कुछ अरसे से आपको सुनना शुरू किया है, वल्लाह क्या आवाज मिजाज है माशाल्लाह, और जो आप हल्का सा मुस्कुराते हैं कमाल है, मुझे तो आपसे इश्क सा होने लग गया है। हाय अल्लाह। फातिमा चलो ये गाना मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी, तुम्हें मुझसे थोड़ा थोड़ा इश्क हो रहा है ना, तो ये तुम्हारे इश्क के लिए। सुनते रहे साजत 101 पे, मुझे जया अंजुम कहते हैं।

0: ओके जी, वेलकम बैक। और आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। और मेरे लिसनर्स बड़े कमाल हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस शामिल करके। आज हम कॉल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि टेलीफोन लाइंस कुछ ख़राब हैं और उन टेलीफोन लाइंस की ख़राबी की वजह से हम सिर्फ आपके मैसेजेस जो हैं वो टेक्स्ट जो हैं उनको शामिल कर रहे हैं। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, 101 लाहौर का जो पेज है वहाँ पे आके मेरे प्रोग्राम की पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर 4471 पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। आपके 4471 के मैसेज को शामिल करता हूँ। अली फ्रॉम रावलपिंडी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैं ज़्यादा रेडियो सुनता तो नहीं हूँ, ड्यूटी पर टाइम नहीं गुजर रहा था तो वैसे रेडियो ऑन किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो है आपका, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच अली, आप सुना करें कभी कभी रेडियो, मज़ेदार होता है यहाँ पे आके ना। मैं तो खैर नहीं, लेकिन मेरी तरह के और बहुत सारे आरजेज प्रेजेंटर्स आके ना अच्छा माहौल बना के रखते हैं और दिल लगा के रखते हैं। तो वो लोग जो कभी कभी ऐसे होता है कि आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, इंस्टा पे रील्स देख रहे होते हैं, तो कभी कभी ना आप बोर हो जाते हैं, मोबाइल भी यूज़ कर करके ना थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में कभी कभी आप रेडियो लगाया करें ना, तो रेडियो सुन के आपको मज़ा आएगा। कुछ कुछ होते हैं जो आके बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं तो खैर बड़ा सड़ियल सा बंदा हूँ और मुझे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है कि सर ये सड़ियल क्या होता है। अब मैं कैसे बताऊँ कि सड़ियल क्या होता है। बहरहाल जो भी होता है कुछ अच्छा नहीं होता। नेहा फातिमा कहती हैं, भाई आप लोगों के लिए खुशी का बायस बनते हैं, अल्लाह आपके लिए दूसरे को खुशी का बायस बनाएगा। ओके, ये अच्छी बात की आपने, वेरी गुड। और जी हाँ, कभी जब हम दूसरों के लिए खुशी का बायस बनते हैं तो फिर अल्लाह ताला वाइस वर्सा हमें उसका रिवार्ड भी देता है और लोग भी हमारे लिए खुशी का बायस बनते हैं, यकीनन बनते हैं। रियाज भट्टी कहते हैं कि ये जो दहलीज पर सजा है गुलाब, कोई पैगाम धर गया होगा। वाह, मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हैं और सलाम करते हैं सबको, बहुत सारी दुआएं देते हैं। और हसन अली कहते हैं ये भाई की आईडी है। ओके, आपके भाई को भी सलाम है जी। और कहते हैं कि फरा कहती हैं कि एक चीज़ अंदर मौजूद नहीं है तो बाहर से कैसे कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो तब ही इफ़ेक्टिव होते हैं जब इंटरनल मोटिवेशन हो। नहीं फरा, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें, अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ा मज़ीद बताएं कि ये क्या चक्कर क्या है। आप तो खैर उस्तानी भी हैं ना, तो आप थोड़ा बताएं ना ये चक्कर क्या है। हसन अली सलाम करते हैं हमें, वालेकुम सलाम। आर के मुगल ने हमें ज्वाइन किया है और कहते हैं कि सर प्लीज सैलानी सुना दें। प्लीज सैलानी क्या है, सैलानी क्या चीज है। इस्लाम कहते हैं कि मुसर्रत ज़िंदगी का दूसरा नाम है, मुसर्रत की तमन्ना मुस्तकिल गम है, हकीकी खुशी उसी लम्हे को पूरी तरह जीने में है, ना कि हमेशा आने वाले कल की फ़िक्र में। इस्लाम साहब, इस किस्म के मैसेजेस जो हैं ना वो करने से पहले 2-3 दफ़ा सोच लेते हैं। अगर मुसर्रत ने सुन लिया और अगर उसने माइंड कर दिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मुसर्रत ज़िंदगी का दूसरा नाम है, मुसर्रत की तमन्ना मुस्तकिल गम है। हो सकता है वो पहले पे एतराज़ ना करे, लेकिन मुसर्रत ये कह सकती है कि क्या मुसर्रत की तमन्ना मुस्तकिल गम है। तो ये थोड़ा सा देख लें आप, फिर बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं किसी ने। आर के मुगल कहते हैं कि जुगनू पास लाजमी होगी। आप ना आर के मुगल, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत टूटे टूटे हुए मैसेजेस कर रहे हैं, एक ही मैसेज में ज़रा पैगाम भेजे ना, ये क्या लिखा हुआ है। नौशीद रशीद का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, पिशावर खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, खुशी साफ दिलों से अपनों के इर्द गिर्द के माहौल से खुद हासिल हो जाती है। हाय। अच्छा वैसे जो लोग ये कहते हैं ना कि खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं। यकीन जानिए कि आजकल के जो दौर है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, पर्सनल एक्सपोजर से कहता हूँ, खुशी का जो ताल्लुक है ना यकीनन पैसे से है। आजकल के इस दौर में अगर आपने जीना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने खुश भी खुद भी खुश रहना है और अपने इर्द गिर्द अपनों को भी खुश रखना है तो पैसा तो चाहिए। इतना पैसा तो चाहिए कि जिससे हम अपनी खुशी को मेंटेन कर सकें। अक्सर घरों में नाचाकियां, लड़ाइयां, झगड़े सिर्फ इसी वजह से हो रहे होते हैं कि पैसे नहीं पूरे पड़ रहे होते, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही होती, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे होते, मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स नहीं दिए जा रहे होते, बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे होते, ख़ानदान में जो खुशियाँ गमियाँ होती हैं वहाँ पे हम उन खुशियों गमों में जो एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं हम नहीं कर पा रहे होते, तो यकीनन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई हैं। तो एक सर्टन अमाउंट तो खुश रहने के लिए पैसे से आजकल के दौर में तो है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि यार पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बेनियाज हो जाओ, पैसा तो चाहिए। हाँ ये बात वो लोग कह सकते हैं जिनके लिए, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो गिनती में भी नहीं आता और फिर भी वो उस पैसे के बावजूद खुश नहीं रह पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे। तो अगर तो हम उस स्पेसिफिक क्लास की बात करें ना, तो फिर तो शायद हम कह सकते हैं कि खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है। लेकिन अगर एक आम आवाम की बात करें ना, जो मेजॉरिटी, जो 80% आपकी पाकिस्तान की या दुनिया की जो आबादी है, वो तो बेचारी बड़ी मुश्किल से अपने किचन को पूरा कर रही होती है। हसन अली कहते हैं कि हा हा हा हा हा मुसर्रत। अच्छा एक गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि खुश कैसे हुआ जा सकता है। कभी कभी होता है सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, दौलत हो गई, शोहरत हो गई, पसंदीदा कोई चीज़ हो गई, पसंदीदा कोई फ़र्द हो गया, फेम, पावर, पैसा, बादशाहत, अजारादारी, हाकमियत, कभी कभी यूं होता है कि इन सब को पा लेने के बावजूद भी खुशी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती बताइएगा, जवाब दीजिएगा। एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आके आपकी बातों को यहीं से शुरू करते हैं। आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी फीडबैक आ रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भरपूर तरीके से मेरे साथ साथ मौजूद हैं। सुनते रहें साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं,
1: लफ्ज नहीं है, सांप हैं जो अब मुझको डसते हैं, लोग मुझे उसकी तस्वीरें भेज के हंसते हैं। तू आया और चला गया, इस दिल को क्या समझाऊं, अब तो एक ही रास्ता है, तुझे मार दूं खुद मर जाऊं। डर लगता था उस बात से जो मुझे तेरे खिलाफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे।

क्या मिलता है तुझको हम जैसों से ऐसा करके, रोते रहना है तुझको इस आंख को दरिया करके। आंखों में हैरानी है, दिल में भी वीरानी है, अब कोई ऐसा जख्म दे जो सीनों में शिगाफ करे। अल्लाह माफ करे।

जो चला गया सो चला गया, जो चला गया सो चला गया, जो है पास उसका ख्याल रख, जो लुटा दिया उसे भूल जा, जो बचा है उसको संभाल रख। कभी सर में सौदा समा कोई, कभी रेग जार में रक्स कर, कभी जख्म बांध के पांव में, कहीं सुर्ख सुर्ख धमाल रख। जो चुराई है शबे तार से, कई रत जगों को गुजार के, वही काजलों की लकीर है, अपनी आंख में डाल डाल रख। किसी ताजा ताजा फिराक से कोई गुफ्तगू कोई बात कर, ये जवाब गाह शऊर है, कोई अपने पास सवाल रख। तेरे दर्द सारे गिरां बहा, तेरी वहशतें हैं अजीम तर, वही बाल खोल के बैन कर, वही शामें सहन मलाल रख। जहां लग्जिशों से मुफर नहीं, ये वो आग ही का मुकाम है, यहां हस्त बूद को भूल जा, नई कुर्बतों से विसाल रख। ये जो रोशनी का है दायरा, ये जो रोशनी का है दायरा, ये जमीन शमसो कमर नहीं, तेरे बस में कब था कि अब रहे, तू उरूज रख या जवाल रख। कभी सर में सौदा समा कोई, कभी राह गुजर में रक्स कर, कभी जख्म बांध के पांव में, कहीं सुर्ख सुर्ख धमाल रख। जो चला गया सो चला गया, उसे जो लुटा दिया उसे भूल जा, जो बचा है उसको संभाल रख। क्या बात है। सहरिश कोसर थी हमारे साथ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी गज़ल हमें भेजी। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका, आप हमारे साथ मुल्तान से इस वक्त हमें सुन रही हैं। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो हमें जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का बेहद शुक्रिया। फातिमा कहती हैं कि आप बस मुस्कुराते रहें, आपके मुस्कुराने पे आज मैं तकरीबन 1.5 मंथ बाद मुस्कुराई। असल बात बताऊं, मुझे अभी नींद नहीं आती, इसलिए एफएम सुनती हूं और आपको सुनना शुरू किया। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप मुस्कुराएं तो सही भाई। प्रोग्राम खूबसूरत है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, प्लीज़ जफा ड्रामा का सॉन्ग लगा दें। फातिमा फ्रॉम मरी, जफा का गाना। चलें मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे मिल गया कौन सा है ये गाना। अच्छा, ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज आया था, और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कहते भाई मेरा ये मैसेज का रिप्लाई करें कि कहते कि आप यकीन माने, हमारे गांव में कहा जाता है कि दिल का क्या है, गधे पे भी आ जाता है, और ना आए तो बादशाह पे भी नहीं आता। आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं भाई। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपके दिल को कोई भाता है तो वो बस भा जाता है, वो कैसा भी हो। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने रूहों को तख्लीक किया, इंसान के बनाने से पहले भी जब अल्लाह ताला ने रूहों को तख्लीक किया और आलम अरवाह में ये रूहें सारी इकट्ठी थीं, तो जो जो रूह वहाँ पे एक दूसरे के साथ थी, जो जो वहाँ पे दोस्त थी, जिनका आपस में ताल्लुक था, जिनकी आपस में मोहब्बत थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो रूहें जब इस ज़मीन पर एक दूसरे के साथ दोबारा मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत, वो उनसियत दोबारा से जागती है उनमें। होता है ना, कभी कभी हम कुछ लोगों से मिलते हैं और अचानक से पहली बार उनसे मिलके हमें यूँ लगता है कि हम इनको बहुत अरसे से जानते हैं, हमें एक ख़ास तरह की अट्रैक्शन, एक अपनाइत सी महसूस होती है। ये मैं सिर्फ ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रहा,
बहुत सारे लोग होते हैं, कभी आप किसी शख्स से मिलते हो सकता है कि वो आपके वालिद की उम्र का कोई शख्स हो, और आप उसे मिलते हो और आपको उससे मिल के ऐसा लगता है कि जैसे मेरा इनसे कोई पुराना ताल्लुक है। आप फटाफट से जब बात करते हो तो आपस में घुल मिल जाते हो। कभी दो ख्वातीन जब आपस में मिलती हैं तो अचानक से यूं महसूस होता है कि जैसे बहुत पुराना कोई रिश्ता है, वाइब मैच कर जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। आप फटाफट से एक दूसरे को, आपको दिक्कत नहीं होती एक दूसरे को जानने के लिए, आपको एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर एक दूसरे को समझना नहीं पड़ता, बल्कि वो पहले दूसरे लम्हे में ही एक ख़ास तरह की एक अंडरस्टैंडिंग या एक मोहब्बत या एक उनसियत या एक ख़ास तरह का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, और ये जो आपने बात की ना कि दिल का क्या है, गधे पे भी आ जाता है। गधे पे कहाँ आता है, हम इंसानों को ही बाज़ुकात गधे से तशबीह दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है, कोई रूहा रहा ना चक्कर है शायद। तो हम जब अपने जैसी किसी रूह से दोबारा मिलते हैं इस दुनिया में, इस धरती में, तो एक मोहब्बत पैदा होती है। बात कर रहे थे हम खुशी की, कि खुश कैसे रहा जा सकता है, खुशी का ताल्लुक किस चीज से है। खुशी का ताल्लुक एक ताल्लुक खिदमत से भी है। कभी कभी जब हम सेल्फलेस हो जाते हैं ना, जब हम बेनियाज हो जाते हैं, तो भी हम खुश होते हैं। हम जिंदगी में जितने भी काम कर रहे होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं मतलब परस्ती के तहत ही कर रहे होते हैं। हमारा कोई मतलब होता है, हमारी कोई चाहत होती है, हमारा कोई मफाद होता है, हमने कुछ सोचा होता है, हम कुछ सोच के वो काम कर रहे होते हैं, तो हमारा कोई ना कोई मकसद, कोई मफाद होता है। लेकिन कभी कभी कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो कि खिदमत के ज़ुमरे में आते हैं, खिदमत खल्क के ज़ुमरे में आते हैं, वो हम ना बड़े बेनियाज होकर कर रहे होते हैं, हम बग़ैर किसी रिवार्ड के, बग़ैर किसी मफाद के कर रहे होते हैं, हमें उसके बदले कुछ चाहिए नहीं होता। यकीन जानिए, जब हम खिदमत करते हैं किसी का भला करते हैं, किसी के साथ कोई नेकी करते हैं, अच्छाई करते हैं, और बेनियाज होके करते हैं, और ख़ास तौर पे कभी उन लोगों के साथ करते हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं। कभी कभी होता है ना, कोई ऐसा शख्स अचानक से हमारी ज़िंदगी में आता है जिसको हम ना जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता, अचानक से वो हमारी ज़िंदगी में आता है और उसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। कभी वो खुद ज़ुबान से कह पाता है और कभी वो ज़ुबान से भी नहीं कह पाता, लेकिन हम उसकी आंखें पढ़ लेते हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, हम उसकी ज़रूरत को समझ लेते हैं, और हम किसी ना किसी तरीके से उसके काम आ जाते हैं, उसका काम पूरा कर देते हैं, और हमें ये मालूम होता है कि इस काम के बाद शायद हम इस शख्स को दोबारा कभी ना मिलें, इसे हमारा कोई वास्ता ना हो, लेकिन वो काम करके, वो खिदमत करके जो खुशी मिलती है, जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। वो जो आपका एक अंदर का एक रांझा राजी होता है ना, और आप कहीं ना कहीं वो अपने रब के हुजूर में जो थोड़ा सुरखरू होते हो कि या अल्लाह, ये मैंने सिर्फ तेरी खातिर किया है और इसके बदले मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तो वो जो खुशी होती है ना किसी के काम आके, किसी की ज़रूरत को पूरा करके, किसी पर बग़ैर एहसान जताए हुए बेनियाज होके, अल्लाह की एक सिफ्त है, मुझे बड़ी पसंद है। क्या कमाल की सिफ्त है। और रब खुद कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद, कह दो कि अल्लाह
एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह हुस्समद। जो बेनियाजी है ना, हम अच्छे हैं बुरे हैं गंदे हैं गलीज हैं जैसे भी हैं, लेकिन रब बेनियाज है। वो हमें हमारी करतूतों की वजह से हमारा रिस्क नहीं रोकता, हम पे हमारी ज़िंदगी अजीरन नहीं करता, वो फिर भी हमें नवाजे चले जाता है, नवाजे चले जाता है, नवाजे ही चले जाता है। यकीन जानिए, अगर हमारी तकदीर बंदों के हाथ में होती ना, हमारी किस्मत बंदों के हाथ में होती और हम ज़रा सा उस बंदे को नाराज कर देते ना, तो वो बंदा हमारा जीना हराम कर देता। ऐसा जीना हराम करता, ऐसा जीना हराम करता कि हमने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन ये रब है और रब की ही खासियत है, जो खुद अपने बारे में कहता है कि अल्लाह बेनियाज है। और अगर ये बेनियाजी की सिफ्त किसी इंसान में आ जाए ना, ओहो, फिर जो वो मर्तबे और मनाजिल तय करता है, और बेनियाजी में जो खुशी है ना, सब कुछ लुटा देने में खुशी है। बेनियाजी ऐसी कि फिर ना गिला है ना शिकवा है, बस शुक्र ही शुक्र है। क्या बात है। आप बताइएगा कि खुशी किस चीज में है, खुश कैसे रहा जा सकता है, खुश कैसे हुआ जा सकता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहते हैं। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार है। कुछ मज़ीद मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं, पेज को हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। मोहम्मद शाहयाद हैं, ये क्या नाम है, बहरहाल मोहम्मद शाहयाद कहते हैं कि सब शाद बाग वाले जो सब शाद बाग वाले जो हुसी बात करके मिलती है वो आज नहीं मिली, फिर भी आपको दिल से दुआ और सलाम सब आरजे को। अच्छा, आपने के स्पेलिंग्स मुझे नहीं समझ आए कि क्या लिखे हुए हैं, लेकिन चलें, शुक्रिया आपने मैसेज किया और आपने जो अपना नाम भी लिखा है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या नाम है। अपना नाम तो ठीक तरह से लिख लिया करें, कैसे कर लेते हैं यार आप। आर के मुगल कहते हैं कि सर ये नज्म सैलानी सड़क किनारे बैठा था कोई रोगी सैलानी, प्लीज ये मुझे, ये मैंने नज्म नहीं पढ़ी हुई ना सुनी हुई है, अगर आप मुझे यहाँ पे भेज देंगे तो मैं उसको रीड कर दूंगा, लेकिन ये नज़्म मैंने नहीं पढ़ी हुई। फरा अफजाल कहती हैं कि वैसे तो खुशी की सब की अपनी ही डेफिनेशन होती है, मगर मेरे हिसाब से पैसों वाली डेफिनेशन आपकी बेहतर नहीं है, क्योंकि पैसे के साथ तो आजमाइश भी जुड़ी होती है और ये भी तो एक्सटर्नल फैक्टर ही हुआ ना। पैसा बस इतना हो कि गोल गप्पे आ जाएं, अब बताएं खुशी गोल गप्पे ने दी या पैसे ने। आपकी वो खुशी अंदर ही थी, कभी कभी बिला वजह बातें करना भी खुशी देता है फॉर नो रीज़न, तो ये कौन सा फैक्टर होगा। ये वही फैक्टर होगा जो आपने खुद बता दिया कि ये कौन सा फैक्टर होगा। सर जी ये गाना लगा दें, गाने का नाम इश्का वे। चलें ये गाना हम लगा देते हैं, ज़रूर लगा देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। बिनते सदीक मुकामे फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले। क्या बात है।
अच्छा जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन होते रहेंगे। नुसरत, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले, क्या बात है। अच्छा जी,

तुम गुजरो और वक्त न ठहरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तुम गुजरो और वक्त न ठहरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। याद आओ और दर्द न भड़के, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सब्र किया है, शुक्र किया है, राजी होकर देख लिया है। सब्र किया है, शुक्र किया है, राजी होकर देख लिया है। लेकिन दिल को चैन आ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है तरके मोहब्बत कर लेने से, तरके मोहब्बत हो भी जाए, कोई उसे जाकर समझाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब तुमने सब राज की बातें गोशे मौज हवा से कह दी, शाखो शजर तक बात ना पहुंचे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर रश्क बहाना कैसा। गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर अश्क बहाना कैसा। मुट्ठी में पानी आ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पहले जैसा नहीं है कुछ भी, इस पे ताजुब करना कैसा। धूप ढले और रंग न बदले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तुम गुजरो और वक्त न ठहरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। याद आओ और दर्द न भड़के, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। वल जनाब, आपके कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। और कवल हैं हमारे साथ, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ खटक हैं, खटक फ्रॉम चिराट, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। आतिफ, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। ज़ुबैर हैं हमारे साथ और हबीब रज़ा हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इकराम, आपका बहुत शुक्रिया। अली रज़ा हैं हमारे साथ और महविश शब्बीर हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे थे खुशी पे, और खुशी के हवाले से आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है इस हवाले से मुझे बताइएगा। बिनते सदीक का कहना है कि होते नहीं किसी के सदा एक जैसे दिन, मैं तेरे दिन को गिनती हूँ, तू आ मेरे गिन। इतना रहे ख्याल बदल जाना, बदल जाता है ये वक्त, जो आज तेरे साथ हैं कल होंगे तेरे बिन। क्या बात है, अच्छी बात है। और इनका कहना है कि ऐ बारिश जब भी तुम बरसती हो, लोग खुशी से आसमान की तरफ देखते हैं, मगर मेरा दिल खामोश हो जाता है। तुम्हारा हर कतरा किसी पुरानी याद को जगा देता है, जैसे वक्त ने अचानक पीछे मुड़कर मुझे पुकार लिया हो। मैंने सीख लिया है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और अपना हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ इतनी देर आते हैं कि हमें मोहब्बत और सब्र का मतलब सिखा जाएं। अब ना तुमसे कोई गिला है, ना किस्मत से कोई शिकायत, बस एक हकीकत समझ आ गई है, यादें कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। इंसान जीना सीखे या ना सीखे, जीना तो फिर भी पड़ता है। खुशी तो ये भी है कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, और खुशी ये भी है कि आपके अच्छे बोल किसी के दिल को तसल्ली दे दें। फराफजाल माजबीन कहती हैं कि ज़िया, आज कोई बात हो गई इंटरेस्टिंग, आज बहुत सारी बातें हुई हैं माजबीन, मैं आपको क्या बताऊं।
आज इतनी सारी बातें हुई हैं कि बस

एक बादशाह शदीद उदास था। हकीमों ने कहा, दुनिया के सबसे खुश इंसान की कमीज पहन लो। सिपाही पूरी दुनिया घूमे, हर अमीर परेशान, हर वजीर बेचैन, हर ताजिर फिक्रमंद। आखिर एक चरवाहा मिला, हंसता था, गाता था, मुतमईन था। बादशाह ने कहा, उसकी कमीज लाओ। जवाब मिला, उसके पास कमीज ही नहीं है। नतीजा, खुशी लिबास में नहीं, दिल में थी। क्या बात है, क्या बात है। शहरीन जद्दा से हमें सुन रही हैं और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी भेजी है। कभी कभी वाकई हम खुशी चीजों में ढूंढ रहे होते हैं, गो के चीजों में भी खुशी होती है। हर चीज आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में हमें लोगों से वास्ता पड़ता है, चीजों से वास्ता पड़ता है, हमें तरह तरह के वाकयात देखने पड़ते हैं, इवेंट्स हमारे सामने होते हैं। तो ये तमाम जो हमारे सराउंडिंग में हैपनिंग्स हो रही होती हैं, वो हमारे मूड पे, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे मिजाज पे, हर चीज़ पे असर तो रखती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों में ही खुशी ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो ही हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी को ख़ास तौर पे प्राइम कर लेते हैं उस ख़ास चीज़ के साथ, उस ख़ास शख्स के साथ, उस ख़ास जगह के साथ, उस ख़ास मौके के साथ, कि अगर ऐसा होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो ही हम खुश होंगे। और कभी कभी यूँ होता है कि वो हमारी ख्वाहिश, वो कंडीशन पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उतना खुश नहीं होते। यकीनन इसका ताल्लुक बाहर की चीज़ों से है तो है, लेकिन अंदर भी एक गहरा समंदर है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी से किसी ने पूछा कि सुकून कहाँ मिलता है। फरमाया, जहां तुम अपनी ख्वाहिशों को कम कर देते हो। तो समझ आई कि ख्वाहिशों के कम होने का नाम खुशी है। दिल में जितनी ज्यादा ख्वाहिशें होती हैं, जितनी शदीद ख्वाहिशें होती हैं, और ये एक ऐन मुमकिन बात है, ये तो यूनिवर्सल एक रूल है कि आपकी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं वो सारी की सारी पूरी नहीं होती। हमेशा कुछ ख्वाहिशें, बल्कि ज्यादातर ख्वाहिशें अधूरी, नामुकम्मल रह जाती हैं। और जब ख्वाहिशें अधूरी और नामुकम्मल रह जाती हैं तो फिर एक तजाद पैदा होता है कि यार वो ख्वाहिश रह गई, काश वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। और जब ये लफ्ज काश आता है तो फिर एक बेचैनी, घबराहट, इज़्तिराब, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें साथ लेकर आता है। लेकिन जो ही हम अपने आप को समझाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को कम करते हैं, उन पे काबू पाते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह लें कि हम अपने नफ्स पे काबू पाते हैं, तो वहाँ से फिर हमारा सुकून और खुशी शुरू होते हैं।

एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी जमातों की नज़र वापस आके मजीद बातचीत को हम यहीं से जोड़ते हैं, आपके मजीद मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

0: जी जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। 1:53 हुए चाहते हैं और आपका और हमारा साथ सिर्फ चंद पलों का रह चुका है। कुछ 6 से 7 मिनट हैं आपके और हमारे साथ में, और हम यूं करते हैं कि जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस जो अब तक हम तक पहुंच चुके हैं इनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ सारम अवान हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं रेडियो लाइव सुन रहा हूं, गाड़ी में तो लाइव नहीं आ रही, फेसबुक पे सुन रहे हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि मौसम और तेरी आवाज़, मेरी आवाज़ को महफूज कर लो, मेरे बाद यहाँ बहुत सन्नाटा है। अच्छा, मोइज़ भाई मेरे, मोइज़ कहते हैं कि भाई हमारे एक सर हैं, वो भी आपकी तरह सड़ियल हैं, यकीन माने इतना मारते हैं, गुस्सा करते हैं, बंदा क्या ही कहे। यही वजह है ना कि नींद के बावजूद अभी भी जाग रहे हैं और पढ़ रहा हूँ। हम उन्हें सड़ियल कहते हैं। ये भी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और मोहम्मद जियाउल्लाह खान फ्रॉम मियांवाली कहते हैं, वेलकम टू द शो सर, मैं आपकी हर बात से 100-100 बार मुत्तफिक हूँ। लोगों की बातों से दिल छोटा मत करें, हर शख्स के देखने और सोचने का जाविया मुख्तलिफ होता है। आपको आज पहली दफ़ा सुना, अच्छा लगा। आप किस किस दिन प्रोग्राम करते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह खान, आपका नाम भी ज़िया है और मेरा नाम भी ज़िया है, हम दोनों ज़िया हैं और ज़िया का स्क्वायर हो गया, क्या बात है। मेरे प्रोग्राम मेरे भाई मंगल को रात 12 से 2 होता है, यानी आज मंगल थी, मंगल 12 से 2 प्रोग्राम हरफे जुनू 101 पे। तो अभी फ़िलहाल वीकली सिर्फ एक ही प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर आप मुझे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके ज़िया अंजुम या दा ज़िया अंजुम लिख के सर्च करेंगे तो यकीनन आपको मेरा मज़ीद कॉन्टेंट भी वहाँ पर मिल जाएगा और इन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ ना कुछ कंटेंट वगैरह आते रहते हैं। बिस्मा कहती हैं कि ये कवाली के एंड में सुर सारे गामा पा में मज़े का है ना, मुझे भी अच्छी लगी ये कवाली। आपके लास्ट शो में मैंने जब ये बोला कि टॉपिक क्या है तो आपने मुझे थोड़ा सा डांटा था, मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने तो आपसे बात करने के लिए एडवांस बैलेंस भी मंगवाया था, बट मैंने ये सोचा कि गलती तो मेरी थी कि मैं टॉपिक के बारे में पूछती ही ना, डांट भी ना पड़ती, ये सोचा और हंस के बोल दिया सब, आप भी भूल जाना ठीक है। इस तरह हमारी खुशी का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं हमारी ज़ात से ही होता है। बस अब मैं थक गई इतना लंबा मैसेज टाइप करके। ओके, बिस्मा कहती हैं कि सिंपल सी बात है ना ज़िया भाई, जब हमारी हर बात में से शुरू हो के मैं पर ख़त्म हो जाती है तो ताल्लुक़ भी अपनी ज़ात से ही हुआ ना, खुशी का भी और गम का भी, क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ख़ुशी का ताल्लुक़ बिल्कुल हमारी ज़ात से होता है, हमारे अंदर से होता है। हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगा, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये देखा, मैंने वो सुना। तो जब हम मैं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक है, ये जाविया भी आपका ठीक है। बहरहाल हर किसी का अपना अपना देखने का नुक्ता और नज़रिया होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर हम अल्टीमेटली कोई मोहर या ठप्पा नहीं लगा सकते कि भाई खुशी जो है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो मैंने कह दिया बस वही खुशी है, पैसा है तो सिर्फ पैसे में खुशी है, इबादत है तो सिर्फ इबादत में खुशी है, खलके खिदमत खल्क है तो बस उसी में खुशी है, बच्चे हैं तो बस उसी में खुशी है, दोस्त हैं तो बस उसी में खुशी है, सैर सपाटा है तो बस उसी में खुशी है। हर किसी के लिए खुशी के अलग अलग मानी होते हैं, हर किसी के लिए खुशी के अलग अलग मेयार होते हैं, हर किसी के लिए खुशी की अलग अलग नौयत होती है। कुछ तो ऐसे कमबख्त लोग भी होते हैं जो जरायम करते हैं, गुनाह करते हैं, लोगों को अजियत पहुंचाते हैं और उनको इसमें खुशी मिलती है। तो वो भी तो लोग होते हैं, वो भी तो एक टाइप ऑफ पीपल होते हैं। बहरहाल खुश रहा करें, कोशिश किया करें कि खुश रहा करें। मैंने ये सीखा है पर्सनली, मैं कहीं ना कहीं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि खुशी जो है ना वो शुक्र में है, ग्रैटिट्यूड में है। जब तक आप शुक्र गुजार रहते हैं अपने रब के, अपने खालिक के, और जब जब आप उन लोगों के शुक्र गुजार रहते हैं जो इर्द गिर्द आपके मौजूद होते हैं और किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी भी तरह से छोटी सही क्यों ना कोई वैल्यू अगर आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रही है उन लोगों की वजह से, और आप उनका शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो यकीन जानिए आप खुश रहते हैं। और सबसे बढ़कर आप अपने रब का शुक्र अदा करते रहते हैं, तो अल्टीमेट खुशी इसी चीज में है। जब हम परेशान होते हैं ना, तो जो चीज हमसे सबसे पहले छिनती है वो शुक्र ही है। हम गिले शिकवों पे आ जाते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम आज का यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई गलती कोताही हुई हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ करने वाला बड़ा इंसान होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को रात 12 से 2। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। आजकल कुछ तबीयत नासाज है, तो कोशिश कीजिएगा कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, नाम लेके अगर दुआओं में याद रखेंगे तो आपका भला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: कुक स्टूडियो सीजन 14।

क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो सरी गुमराही में हो उसे राह पर ला सकते हो। अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो उन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिनका हमने उनसे वादा किया है, हम उन पर काबू रखते हैं।